0: यः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः षष्टि आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः सप्ततिः प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति, समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च एफआईआर प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ एमवी गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः। एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटनासमये पञ्च भारतीय नागरिकैः सह सप्तदश चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉ जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामादेशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्वम् अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 49,55,55 कोटि उपयोक्तारः यूपीआई इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो।

0: हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. On the second leg of a three-nation state visit, President Draupadi Murmu has reached North Macedonia. This is the first ever visit by an Indian president to North Macedonia. President Murmu will hold bilateral talks with her Macedonian counterpart Gordana Siljanovsku Davkova. She will also meet the Prime Minister Hristijan Milskosti, Speaker of the Assembly Afrim Gashi, and will also address Assembly of North Macedonia. The President will also address India-North Macedonia Business Forum. Both sides have keen interests in deepening economic ties in the priority sectors like agriculture, pharmaceuticals, science and technology, IT and ITES. President Murmu is also scheduled to visit the Church of St. Spa and will also lay a wreath at the grave of eminent Macedonian revolutionary Gotse Delchev. External Affairs Minister S. Jaishankar met his Panamanian counterpart Javier Eduardo Martinez Achavasque in New Delhi. During the meeting, Dr. Jaishankar underscored the importance of deepening India's engagement with Panama as a gateway to Latin America and the Caribbean region. Both leaders held wide-ranging discussions, including advancing trade, business development, maritime, health, agriculture, education and digital cooperation. They also spoke about engagement at the multilateral fora.
3: Panama serves as a natural bridge for us, for global trade routes, gateway for the wider Latin America region. And anchored by the Panama Canal, your logistics infrastructure certainly sets a global landmark. We value your interest in collaborating across a wide array of domains from education, scholarships, pharmaceuticals, technology, and of course, most important, trade. We note that you have had a consistently high growth trajectory, and as we ourselves accelerate our development towards the quest of Viksit Bharat or developed India by 2020.

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पायाम सुबह, अपने मेजबान रूफ अली और मेरे साथ हैं फैजान कुरैशी। फैजान, हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से।
1: जी बिल्कुल।
0: और अच्छी सेहत इंसान को सिर्फ लंबी जिंदगी ही नहीं देती बल्कि बेहतर जिंदगी गुजारने का हौसला भी अदा करती है।
1: जी,
0: जब इंसान खुद को तंदुरुस्त महसूस करता है तो इसकी सोच जो है वो मजबूत होती है, इसका एतमाद बढ़ता है और वो नए मौके से फायदा उठाने के काबिल होता है।
1: जी बिल्कुल रूफ, ज़हनी सुकून भी सेहत का एक लाजमी जुज है।
0: बिल्कुल,
1: हम सबको अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हात जरूर पैदा करने चाहिए जो दिल और दिमाग को सुकून दे।
0: जी,
1: अच्छी किताबों का मुताला और अहले खाना के साथ खुशगवार वक्त गुजारना इंसान के अंदर मजबूत सोच को फरोग देती है और जहनी दबाव में भी कमी का बाइस बनती है।
0: जी बिल्कुल। एक और अहम बात यह है कि सेहत सिर्फ हमारी जाती जरूरत नहीं है बल्कि हमारे खानदान और माशरे की भी जरूरत है। घर का हर फर्द जब तंदुरुस्त

0: दोस्त और खुशबाश होता है तो पूरा माहौल जो है वो खुशगवार रहता है। इसी तरह सेहतमंद अफराद ही एक मजबूत, फाल और तरक्की याफ्ता माशरे की बुनियाद देते हैं।
1: जी रूफ, इसके साथ साथ सफाई सुथराई भी सेहतमंद जिंदगी का बुनियादी उसूल है।
0: बिल्कुल,
1: साफ माहौल, साफ पानी, जाती सफाई और अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखना न सिर्फ बीमारियों से बचाव में मदद देता है बल्कि माशरे में जिम्मेदारी के एहसास को भी फरोग देता है।
0: हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छी आदतें जो हैं अच्छी सेहत की बुनियाद बनाती है। वक्त पर सोना, जागना, मुनासिब आराम करना, जिस्मानी सरगर्मी को मामूल का हिस्सा बनाना, मजबूत सोच अपनाना और दूसरों के साथ हुस्न सलूक अख्तियार करना, ऐसी आदतें हैं जो इंसान की जिंदगी को मुतवाजिन बनाती हैं।
1: बिल्कुल, जिंदगी में कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ सलाहियत से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से भी होता है रूफ।
0: बिल्कुल,
1: और मुस्तकिल मिजाजी उसी वक्त मुमकिन होती है जब इंसान जिस्मानी और जहनी तौर पर खुद को तवाना महसूस करे। इसीलिए अपनी सेहत पर तवज्जो देना दरअसल अपने मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मुतरादिफ है।
0: बिल्कुल फैजान, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमत अता की हैं और सेहत इनमें से एक अजीम तरीन नेमत है। इस नेमत की कदर करना, इसकी हिफाजत करना और इसे बेहतर रखने की कोशिश करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है।
1: जी बिल्कुल सामीन, आज ये अहद करें कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तवाज़ुन, नज्म व ज़बत, मज़बूत सोच और अच्छी आदतों को जगा दे ताकि न सिर्फ हम खुद एक बेहतर जिंदगी गुजार सके बल्कि अपने घर, अपने माशरे और अपने वतन के लिए भी मुफीद साबित हो।
0: बिल्कुल।

0: आपने फिल्म शोले से नगमा सुना? मोहम्मद रफी और जी माफ कीजिए, आपने किशोर कुमार और मनड़े की आवाजों में फिल्म शोले से नगमा सुना। फैजान, हम बात कर रहे थे आनंद बख्शी की।
1: जी बिल्कुल।
0: आनंद बख्शी साहब के बारे में इंडस्ट्री में एक बात जो है बहुत मशहूर थी
1: जी
0: कि वो क्रिटिक्स यानी नकादों को मुतासिर करने के लिए कभी नहीं लिखते थे, बल्कि वो इस आम इंसान के लिए लिखते थे जो सिनेमा हॉल की आखिरी सीट पर बैठकर फिल्म देखता है। वो रिक्शे वाले, मजदूर और आम घरेलू खातून की जबान समझते थे। यही वजह है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स ने इन्हें रिकॉर्ड 40 बार नामजद किया।
1: जी रूफ, सिर्फ नामजदगी ही नहीं, उन्होंने 4 बार ये बावकार अवार्ड अपने नाम भी किया।
0: बिल्कुल।
1: इनके गानों में जिंदगी के उतार चढ़ाव, तकदीर के खेल और इंसानी रिश्तों की गहराई इतनी सादगी से बयान होती थी कि इंसान दंग रह जाता था। वो जिंदगी की कड़वी से कड़वी सच्चाइयों को भी इंतहाई खूबसूरत और मस्बत मोड़ दे देते थे। रूफ, उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि हालात जैसे भी हो, इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। इनके गीतों में मायूसी के बजाय हमेशा जिंदगी का जोश, हिम्मत और हौसला नजर आता है। वो कहते थे कि सफर ही जिंदगी का असल हुस्न है।
1: जी अनंत बख्शी साहब साल 2002 में हमसे जुदा जरूर हुए, लेकिन इनका लिखा हुआ हर लफ्ज, इनकी तख्लीक करदा हर लाइन और इनका हर गीत इन्हें हमेशा हमारे दरमियान, हमारे प्लेलिस्ट और हमारी यादों में जिंदा रखेगी।
0: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने फैजान। जब तक इस दुनिया में मौसीकी बाकी है, जब तक इंसान अपने जज्बात का इजहार करने के लिए गीतों का सहारा लेता रहेगा, तब तक आनंद बख्शी साहब का नाम फजाओं में गूंजता रहेगा। वो एक ऐसे फनकार थे जो मरकर भी लाफानी हो गए।
1: जी बिल्कुल सही।
0: आप सुनते रहें लाइव मॉर्निंग शो प्याम सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
3: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
4: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
5: सब्र रोशिद सुलूम।
4: सुनते रहिए हमारी नशरियात
2: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज।

ओटिक्सनचे ऑपरेशन वज्र असतात. बाहकरोर ट्रॅमॅडॉल टेबलेट दिल्ली हिंद अके वेअर हाऊस मज गिरफ्त जबत करमत. अचित वोत खबरन हुंद बुलेटिन अंद कश्रन खबरन हुंद ब्याखा बुलेटिन सबदे आकाशवाणी श्रीनगर पर 9 बजे तो 1 मिनट पर नशर. असदी इजाजत, खुदा हाफिज़.

यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 7:55 हुए हैं। एक नज़र अब के बाद हमारे यहाँ से नाश्र होने वाले प्रोग्रामों पर।

रात 9:30 पर शोरा की बज़्म सजेगी, बज़्म शार। इस बज़्म में जो शोरा शिरकत फरमाएंगे उनकी अस्माई ग्रामी यूं हैं: अब्दुल हमीद मीर, मीर अफरोज़, अली मोहम्मद भट्ट, नज़ीर अहमद वाज़ा, बशीर अहमद भट्ट और मुनीबुर रहमान। शब 10 बजे फिल्मी नगमों का फरमाइशी फ़नन प्रोग्राम पेश होगा। हेलो आपकी फरमाइश, प्रोग्राम पेश करेंगी सकीना राठौर।

हम सफर ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। प्रोग्राम का मौजू है आलम मलाइका अलैहिस्सलाम। आज आप इसकी 6वीं किस्त सुनेंगे। इस मौजू पर रोशनी डालेंगे हम सफर मैरिज काउंसलिंग इदारे शरीफ के सरबरा और इस प्रोग्राम के रूह रमा हजरत मौलाना फयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनाना बोलेगा प्रोग्राम हम सफर सुबह 8:45 पर।

सुबह 10 बजे प्रोग्राम पेश होता है सूफी सदा। आज का प्रोग्राम सूफी शायर गाइब कानिमी से मुतल्लिक है। उस्ताद गुलाम अहमद कालीन बाफ और साथी सोफियाना मौसीकी पेश करेंगे दिन के 11:30 पर, और फिर दोपहर आए बचे इनसे आप मकामी दुगा और मकामी बायत सुनेंगे।

खवातीन की महफिल बज़्म निस्वा रास्ता होगी दोपहर 12:40 पर। इसमें मेहमान मारूफा शाह से गुफ्तगु होगी, मौजू हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन। जिनके 1:10 पर NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उमंग। फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम पेश होगा सहपहर 3:00, पार्टी प्रोग्राम सहपहर 4:00 नष्ट होता है। पंजाबी प्रोग्राम सहपहर 4:30 पर पेश होगा।

गोजरी प्रोग्राम समाप्त करें शाम 5 बजे। देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर। हालात वाकत की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शहरबीन के जरिए शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज का वक्त नशरिया है रात 8 बजे। समीन यही आपके बाद हमारे यहां से नश्र होने वाली प्रोग्राम।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगे। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
4: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहां की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
2: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

0: कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC

0: जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के सामरदुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मूज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापार

0: एक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह, अपने मेजबान रूफ अली और मेरे साथ हैं फैजान कुरैशी। फैजान, चिनार बुक फेस्टिवल 2026 की बात करेंगे जो सच चुका है डल झील के किनारे। अगर आप अब तक वहां नहीं गए तो हम सामीन से गुजारिश करते हैं कि आप वहां जरूर जाएं
2: और किताबों की दुनिया की सैर करें।
1: बिल्कुल, जो SKICC में जो है वो सज चुका है और आप वो मिस ना करें। आज ही अपने फैमिली और दोस्तों के साथ प्लान बनाएं क्योंकि ये मेला सिर्फ 26 जुलाई तक है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो एक फैजान जमाना था जब किताबें इंसान के बेहतरीन साथी समझी जाती थीं।
2: सही।
1: घरों में जाती लाइब्रेरियां हुआ करती थीं, अखबारात और रसाइल का बेचैनी से इंतजार किया जाता था और फुर्सत के लम्हात किताबों की सोहबत में गुजारते थे। उस वक्त की बात करते हैं। उस वक्त मुताला जो था सिर्फ इम्तिहानात की तैयारी का जरिया नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता था। आज मंजरनामा काफी हद तक फैजन बदल चुका है। यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि लोग जो है बिल्कुल पढ़ना छोड़ चुके हैं, लेकिन ये जरूर महसूस होता है।
2: सही बात है,
1: गहरी संजीदा और मुसलसल मुताले की रवायत पहले के मुकाबले में कमजोर पड़ गई है।
2: बिल्कुल सही बात है रूफ। इस तब्दीली की कई वजूहात हैं जिनमें सबसे नुमाया डिजिटल ज़राया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, मुख्तसर वीडियोस और मुसलसल आने वाली इतलात ने हमारी तवज्जुह को मुंतशिर कर दिया है। आज बहुत से लोग घंटों मोबाइल स्क्रीन पर गुजारते हैं लेकिन चंद सफ़ात यकसुई से पढ़ना इनके लिए मुश्किल महसूस होता है। ये मसला सिर्फ नौजवानों तक महदूद नहीं बल्कि हर उम्र के अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक और अहम वजह हमारा जो है मसरूफ तर्ज ज़िंदगी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर अपने रोज़मर्रा मामलात का जायजा लें तो मालूम होता है कि मसला जो है वक्त की कमी से ज़्यादा इसकी दुरुस्त जो है इस्तेमाल है, वक्त का इस्तेमाल।
2: सही बात है।
1: अगर रोज़ाना सिर्फ 20 से 30 मिनट भी मुताले के लिए मुख्तस हम करेंगे या किया जाए तो एक साल में कई अच्छी किताबें पढ़ी जा सकती है जो इंसान की सोच और शख्सियत पर मस्बत असरात वो उनका पढ़ सकता है।
2: सही बात है रूफ। इसके साथ साथ हमारा इम्तिहान पर मबनी तालीमी निज़ाम भी इस रुझान में एक अहम किरदार अदा करता है रूफ। बहुत से तलबा सिर्फ इम्तिहान पास करने की हद तक निसाब पढ़ते हैं और इम्तिहान ख़त्म होते ही किताब से इनका ताल्लुक भी ख़त्म हो जाता है। हालांकि हकीकी तालीम वो है जो इंसान में सीखने का शौक पैदा करे, सवाल करने की आदत डाले और इल्म को अमली जिंदगी से जोड़े।
1: बिल्कुल, एक वजह यह भी है कि हमारे घरों में मुताले का जो माहौल है पहले जैसा नहीं रहा। अगर बच्चे अपने वालदेन और बुजुर्गों को किताबें पढ़ते हुए देखेंगे ना तो इनमें भी मुताले का शौक पैदा होगा।
2: सही बात।
1: अगर घर का ज्यादातर वक्त जो है सिर्फ मोबाइल या टेलीविजन पर गुजारें तो बच्चों का जो रुझान है भी इसी तरह हो जाता है। बच्चे जो है नसीहत से ज्यादा अमल से सीखते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो बड़े हैं वो क्या करते हैं।
2: बिल्कुल
1: तो
2: सही,
1: फिर उसका नकल करते हैं।
2: सही बात है रूफ। इसके अलावा लाइब्रेरियों का महदूद इस्तेमाल भी एक अहम मसला है रूफ। लाइब्रेरी सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं बल्कि इल्म, तहकीक और फिक्री तबादला ख्याल का मरकज होती है। दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में अवामी लाइब्रेरियाँ आज भी भरपूर अंदाज में फ़ाल हैं जहाँ हर उम्र के लोग मुताला और तहकीक के लिए आते हैं रूफ। हमें भी अपनी लाइब्रेरियों को मजीद फ़ाल बनाने और नौजवानों को इनसे जोड़ने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल, एक नगमा मैंने क्यों करके रखा है
2: जी,
1: पहले सामीन को ये नगमा सुनवाते हैं।
2: जी बिल्कुल, इसके बाद हम मुताला के हवाले से और गुफ्तगू करेंगे।
1: बिल्कुल।

0: literary sessions, digital reading corner aur cultural performances ka lutf uthaiye. 18 se 26 July, SKICC, Srinagar. Chinar Book Festival, organized by National Book Trust India in collaboration with NCPUL and District Administration Srinagar. Together we read, together we lead.
1: जी फैजान, हम बात कर रहे थे किताबों की।
2: जी बिल्कुल,
1: ये भी देखा गया है कि आजकल लोग जो हैं वो तवील मजामीन और किताबों के बजाय मुख्तसर पोस्ट और मुख्तसर मालूमात को तरजीह देते हैं।
2: सही बात,
1: अगरचे मुख्तसर मालूमात अपनी जगह मुफीद हो सकती है, लेकिन गहरी सोच, तनकीदी शऊर और वसी इल्म, मुसलसल और संजीदा मुताले ही सही हासिल होता है। किताब इंसान को गौर फिक्र, तहमुल और यकसुई की आदत सिखाती है, जबकि तेज रफ्तार डिजिटल मवाद जो है अक्सर सिर्फ वक्ती तवज्जो हासिल करता है।
2: जी रूफ, अलबत्ता टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर कसूरवार भी करार नहीं दिया जा सकता। अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो यही टेक्नोलॉजी मुताले को फरोग देने का जरिया बन सकती है। आज हजारों किताबें ई बुक की सूरत में दस्तियाब हैं।
1: बिल्कुल,
2: ऑडियो बुक्स मौजूद हैं और इल्मी लेक्चर्स भी आसानी से मयसर हैं। असल सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी मौजूद है या नहीं, बल्कि यह है कि हम इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल, और मुताला सिर्फ मालूमात हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि शख्सियत साजी, फिक्री पुख्तगी और शोरी तरक्की का एक मुसलसल अमल है। एक अच्छी किताब इंसान की सोच बदल सकती है, इसकी ज़िंदगी का रुख मुतइन कर सकती है और इसे नए इम्कानात से रोशनास करा सकती है।
2: जी रूफ, अब तक हमने गुफ्तगू की कि मुताले की अहमियत क्या है और इसके कम होते रुझान के मुख्तलिफ वजूहात पर हमने बात की। आइए रूफ, अब इस सूरत हाल के मुमकिन हल पर गुफ्तगू करते हैं।
1: बिल्कुल, इस तब्दीली का आगाज सबसे पहले घर से हो सकता है। वालदेन अगर खुद मुताले को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, बच्चों को अच्छी किताबें तोहफे में दें और घर में मुताले के लिए साजगार माहौल फराहम करें, तो बच्चों में किताब से मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो सकती है।
2: सही बात, तो इस कल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है और इसी तरह तालीमी इदारों का किरदार भी निहायत अहम है। स्कूलों कॉलेजों में सिर्फ निसाबी तालीम ही काफी नहीं, बल्कि तुलाबा को गैर निसाबी किताबें पढ़ने, किताबों पर तबादला ख्याल करने और कुतुब बीनी की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की भी तरगीब दी जानी चाहिए। किताब मेले, अदबी नशस्तें, मुसन्निफीन से मुलाकातें और लाइब्रेरी की सरगर्मियां मुताले की आदत को फरोग देने में किरदार अदा कर सकती है।
1: बिल्कुल, नौजवान नस्ल के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि पायदार कामयाबी का ताल्लुक जो है मुसलसल सीखने और मुताले से है। मुख्तसर वीडियो या वीडियोज जो हैं, जो भी है, ये चंद लामात की मालूमात वक्ती दिलचस्पी जरूर पैदा कर सकती हैं, लेकिन मजबूत फिक्र, मौसर इजहार और वसी इल्म के लिए बाकायदा मुताले जो है नागुजीर है।
2: जी बिल्कुल, ये भी जरूरी है कि हम मुताले को बोझ न समझें। हर शख्स अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किताब का इंतखाब कर सकता है। किसी को तारीख पसंद है, किसी को अदब, किसी को साइंस, मजहब, नफ्सियात, सफरनामे। अहम बात यह है कि मुताले का सिलसिला मुस्तकिल जारी रहना चाहिए।
1: ये जो है बकुल हमें याद दिलाता है कि सीखने का सफर जो है कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मुताला जो है इस सफर का सबसे काबिल एतमाद साथी है। जो शख्स आज पढ़ना छोड़ देता है, वो कल सीखना भी छोड़ देता है।
2: सही बात है जी। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले हमारे नाज़रीन जो है उन तक हम एक कलाम पहुंचाते हैं।
1: जी फैजान, वक्त जो हुआ है, ये जो है अब खबरों का वक्त हुआ है।
2: जी जी, खबरों का वक्त हुआ है।
1: बिल्कुल, और क्योंकि 8:30 हो रहे हैं और अब हम आपको समीन को आकाशवाणी दिल्ली ले चलते हैं, जहां से वो खबरें सुनेंगे। आइए खबरें सुनते हैं।

चार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह

0: आला सतही रवाबित और तबादलों को मजीद तकवीत देगा, जिससे दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे क़लीदी साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहैम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अगले महीने से पेंशन की रकम 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये माहाना कर दी गई है। कल जारी किए गए एक सरकारी हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा कि पेंशन के की इजाफा शुदा रकम फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT निज़ाम के जरिए तमाम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के IT महकमे के इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि मगरबी बंगाल की ये महरूम बिरादरियां कई बरसों से इंतजामी बेतवज्जुही का शिकार रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में BJP हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है। इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अलाक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है, जिसका मकसद डाक के ज़रिए वोट डालने के अमल को मज़ीद जामे, महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त मुतालिक बैन अलाक़वामी इदारे IIIDEM और बैन अलाक़वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के तमाम 24 इंतखाबी ज़िलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतज़मीन, पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहिरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के ज़रिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निज़ाम को मज़ीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के ज़रिए वोट डालने का अमल, इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधड़ी की रोकथाम, ऑडिट के निज़ाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निज़ाम और दूरदराज इलाक़ों से वोट डालने के निज़ाम के मुस्तक़बिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सिक्किम में नामची ज़िले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की ज़ेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची ज़िले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम अज़ कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल हैं। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने आज रियासत के 5 ज़िलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं।

0: कि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज़्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के उहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकामात की खिलाफवर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमनो अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जाँच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को ज़बरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। ख्वातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मानसून इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ मरकजी वजीर जेपी नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिये अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। ईशा आकाशवाणी श्रीनगर 8:35 शब्द पेश स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफर। आज के प्रोग्राम को मौजूद आलम मलाइका अलैहिस्सलाम। आज बुझो तो अमुक शेम कस्त अत मौजूद पे कत हम सफर मैरिज काउंसलिंग इदारे शरीफिक سربراہ

0: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: मकामी रोजनामों की सुर्खियां बराह रास्त आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। अब दीगर सुर्खियों पर एक नजर। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का हंगामी खेज आगाज, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी, ओम बिरला की तामीरी बातचीत और ताउन की अपील। एक और अमरीकी फौजी हलाक, वाशिंगटन के ईरान पर हमलों में शिद्दत, बामा ने मुजाकिरात के लिए अमरीका अब भी तैयार हैं, मार्को रूपियो।
2: चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत जायजा इजलास, अमरनाथ यात्रा के इंतजाम मजीद बनाने की हिदायत।
1: ईरान का जवाबी वार, अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया।
2: डॉक्टर फारूक का जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा।
1: आबनाई हरमूज में जलते हुए बहरी जहाज के अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। एक और सुर्खी है, अमरीका में पैदाइश के वक्त बच्चों की तब्दीली का इंकशाफ, 38 साल बाद दो खानदानों का अस्पताल पर मुकदमा।
2: न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को दी शिकस्त, सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली।
1: एक और सुर्खी, लिबनानी सदर की वाशिंगटन में जंग बंदी के फ्रेमवर्क पर बातचीत।
2: स्पेन के गलबे के दरमियान रोड्री ने आलमी कप का गोल्डन बाल जीता।
1: कश्मीरी एक मायनाज फनकार से महरूम, मारूफ अदाकार सज्जाद खान इंतकाल कर गए।

0: कश्मीर के मारूफ और हर दिल अजीज टेलीविजन और रेडियो अदाकार सज्जाद खान के इंतकाल से फन व सकाफत की दुनिया एक माय नाज फनकार से महरूम हो गई। इनके वफात पर अदबी सकाफती और नशरियाती हलकों में गहरे रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। सज्जाद खान ने अपनी तवील फनी जिंदगी के दौरान मुतअद्दिद यादगार किरदार अदा किए और अपनी शानदार अदाकारी सादा मिजाजी और बावकार शख्सियत के बाइस नाजरीन और फनकार बरादरी में नुमाया मुकाम हासिल किया। सामीन ये थी मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
1: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आप मकाम रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां समाप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।

0: आप आबिदा परवीन की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। ठीक 9:20 पर हमारे यहाँ से खबरें नशर होंगी, पहले कश्मीरी और उसके फौरन बाद उर्दू में। खबरों से पहले ये वक्फ।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज़ जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18-26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिशों, अचानक आए सैलाब और चट्टानें खिसकने की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा जिले में दो कीमती इंसानी जानों के जियां पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवारान के साथ ताजियत की है। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में मनोज सिन्हा ने पूंछ में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में 7 अफराद के जान बहक होने पर

43.5 MHz पर सुबह 9:30 बजे। समीन आज बोमवार तो आज खास डालन इंतजाम थोमुत कशर बदन पे अपनी प्रोग्राम फुलवन।

तो यीशु कलाम में तन्हा निजामी बोजन जो उस नातिया कलाम पेश करान नसीमुल हक वंच पेश अब्दुल गफार डार कानी तो सतिन आवाज मंस बहुत ही शो कलामे अनजान कश्मीरी।

तो इस कल्याण ने सादु दीन सादी भोजन पेशस करन मुनीर अहमद मीर राशिद अख्तर ते सैथी मुन बोजो कल्याण ने बशीर दादा पेश करन वहीद जिलानी।

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
3: सूफी सदा ये प्रोग्राम चुप्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे साढ़न दहन बजन ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।
4: सूफी सदा।
5: रंद खुद दारस तकबीर परित मरित जिंदई रूद, दुन मीमन मंज हई गो सिरित मरित जिंदई रूद।
6: सिदिन सादन लफ्जन शारुख जाम लगित, मरिफत के मसवान हयती हुन बोई बास नाप नावन छे, सूफी सिलसिलच सोकत यो सर करान सरी वंस जालियो मंज नेरान छे।
5: तो सैन प्रथ सूफी शहरन पन्न मकदूर तो मिजाज मुताबिक अमिच बावत कर्म। तो यथव कलामो सहर सुन मियार तन तो व्यवहार तजह सपदान।
6: यम शार गब कानि हम सब युद्ध हल्क आज तवादी हजन मुख्तलिफ जायन मौजूद, तो यहन तरबियत याफ्त तिहद मुश्क अदफर फहलवन खतर सूफी सिलसिलस गोड बरान।
5: गायब कानि हम श्रीनगर टंगमर्ग सड़क पे बन कानि हम बसान, युद्ध नाव गुलाम महिदीन शेख तो बाबू सब नाव गुलाम महमद शेख।
6: गायब सब जाय सन 1913 अंदर अथ गामस मंज, यो सु जमान यले ट्रांसपोर्ट का इंतजाम ओसने तो बे ओस खाल कुनी कुनी जाय स्कूल। अक्सर लुकन हुन पेश ओस काश्तकारी तो कमिल ओस जगीरदारन चकदारन तो पेचीदारन हिंदिस रहम कर्मस पेट।
5: गायब सब आयो स्कूल त्रावन, मगर युद्ध बाब सब मुसलसल बेमार रोजन सब हुक नमो शेमी जमास पत ब्रो पकित, लिहाजा हिजक आर कम कर त्रेन वरियन बेमार रोजन पत गई यहिंद बाब सब तहमत हक।
6: अमि विज आसहन गायब सब मसा 13-14 वरी वंसी हिंद, तो गर बचन हज सारी जिम्मेदारी पे इंद लावि शान पे, मगर यमो हर हेमत तो रूद हशी काम सहव ट बज रटिक ट हल बनोक तो दो रात कर मेहनत।
5: नतीज द्राव युद कार बढ़ने सो यज आमदनी मज तुर तो इन आव काफी इतमान। लोकचार पे बुजुर्गन तो मलंगन हंदिस सोहबत मज रोजान, दपान मुहिम वात पाने हावान। गालिबन आसान वन महज 17 वरी वंस यमो बदरन किस गुलाम अहमद शाहस निश शरीयत तो तरीकत रहबरी हासिल कर।
6: पन्ने बापार किस सिलसिलस मज ओस इमन अक्सर माल खालने वालने बापत जन कल पे गर तामुक सफर पैदल तय पेवान कर, तिकाज तिमन अयामन मज ट्रांसपोर्ट कह सबील, तो पैदल सफरस दौरान सुली चीर आई इमन अजीब वाक पेश।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम दो आकाशवाणी श्रीनगर पेट सुबह 10 बजे पेट साढ़े 10 बजे तम नश्र सपदान।

0: सन्य दुमाला क्रुहना इंतजार। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वे 268 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रयाम सुब प्रोग्राम जारी है। अगली सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं हमारे साथी अनुसर फैजान कुराशी के साथ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुहेला आपका। आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह और अब वक्त हो चला है लयो इंटरेक्टिव सेशन का और आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो मेहमान शरीक गुफ्तगू है वह है मारूफ मुआलिज डॉक्टर शारिक मसूदी साहब। और आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे यानी डायबिटीज़ के हवाले से, जो शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी एक ऐसा मर्ज है जिसमें दुनिया भर की तरह हमारे माशरे में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉक्टर शारिक मसूदी साहब इस वक्त हमारे साथ तशरीफ आवर है और डॉक्टर साहब जो है ये है फॉर्मर डीन ऑफ द मेडिकल फैकल्टी सिक्किम मिसौरा एंड फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंडोक्रिनोलॉजी सिक्किम मिसौरा। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ और दीगर हारमोन से मुतलिक अमराज के इलाज में वसी तजुर्बा रखते हैं और तवील अरसे से मरीजों की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। जैसे आप सुनते आए हैं कि डायबिटीज़, ओबेसिटी और इससे जुड़े हुए जो बाकी इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम्स है, जैसे फैटी लिवर, जैसे फीमेल्स में PCOS,
1: जी बिल्कुल,
2: जैसे हाइपरटेंशन, जैसे गाउट, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे से जुड़े हुए हैं।
1: सही बात है।
2: और इसका आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपने ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पब्लिक के लिए चूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता है पब्लिक को इसको समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे सामईन को बताइए कि डायबिटीज़ के बारे में और ये बीमारी हमारे जिस्म में कैसे पैदा होती है।
2: डायबिटीज़, जिसका असली नाम डायबिटीज़ मेलिटस है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा या मकदार बढ़ जाती है
1: जी,
2: जिसको मेडिकल टर्म में हम ग्लूकोज लेवल बोलते हैं।
1: जी,
2: तो ये बढ़ती है दो वजह से, या तो इस इंसान के जिस्म में इंसुलिन की मात्रा या मकदार बहुत कम है।
1: जी,
2: या उसकी इंसुलिन मकदार है, अच्छी है, लेकिन वो काम नहीं करती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं।
1: जी,
2: तो नॉर्मली अगर हम कुछ भी खाएं तो हमारा जो शुगर होता है एक एक एक महदूद लेवल तक होता है।
1: जी,
2: जैसे खाने से पहले हमारा शुगर 100 के भी जाएगा नहीं।
1: जी,
2: 99, तो फास्टिंग में 99 तक होता है हमारा शुगर।
1: जी,
2: फास्टिंग मीन्स कि जब आपने जो आपका जो पिछला मील था 8 घंटे उससे ज़्यादा पहले खाया। तो अगर हम खाते हैं तो खाने के बाद हमारा ग्लूकोज लेवल मैक्सिमम 139 जाएगा, 140 नहीं जाएगा, हम कितना भी खाएं, अगर हम नॉर्मल हैं तो जब शुगर की लेवल फास्टिंग में 100 से 125 तक हो जाती है।
1: जी,
2: इसको हम बोलते हैं इम्प्योर फास्टिंग ग्लूकोज। ये डायबिटीज़ नहीं है लेकिन प्री डायबिटीज़ है।
1: जी,
2: मतलब इन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होने का
1: ज़्यादा खतरा है।
2: इसी तरह अगर आपके खाने के बाद 140 से 199 तक हो जाता है शुगर,
1: जी,
2: कुछ भी खाने 2 घंटे के बाद, तो ये इसको हम बोलते हैं इम्प्योर ग्लूकोज टॉलरेंस, IGT।
1: जी,
2: अगेन ये डायबिटीज़ नहीं है बट ये प्री डायबिटीज़ है। ये इस बात का इशारा देती है कि अगर आप कदम नहीं उठाते हैं तो आपको
1: डायबिटीज़ एहतियात नहीं बरतें
2: चांस है।
1: जी,
2: तो अगर आपकी फास्टिंग ग्लूकोज 126
1: जी
2: या उससे ज़्यादा है, दो बार,
1: जी,
2: एक बार कभी गलत भी हो सकता है, और दो बार आपने किया टेस्ट और 126 या उससे ज़्यादा आई, 126 और मोर, या आपने खाने के बाद 200 से ज़्यादा जाती है कुछ भी खाने के बाद,
1: जी,
2: तो ये डायबिटीज़ है।
1: जी,
2: एक और तरीका हम डायबिटीज़ जानने का है, उसको बोलते हैं HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। वो डिपेंड करता है कि आपकी शुगर अगर बहुत दिनों से, बहुत महीनों से हाई रही है तो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है RBCs, उन पर एक तरह की शुगर की एक तह चढ़ जाती है।
1: जी,
2: जैसे जहाँ पर सड़क में जहाँ ट्रैफिक हो तो वहाँ देखते हैं इर्द गिर्द जो होते हैं स्ट्रक्चर्स है, दुकानें, उन पर ज़्यादा गर्द

0: करती है, तो हमें समझ आता है कि यहाँ पर ज्यादा हैवी ट्रैफिक है
1: जी।
0: इसी तरह जब आप आरबी से भी देखते हैं, ये शुगर की जो ता है ये चढ़ गई है ज्यादा,
1: ये सारी चीजें हमें टेस्ट से पता चलती
0: है, टेस्ट से पता चलती है।
1: लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से एक इंसान को ये पता चल सकता है वो शुगर की बीमारी में मुबतला हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है?
0: बिल्कुल, तो जब हम डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, हमारा जो अक्सर जो जिक्र होता है वो टाइप 2 का होता है
1: जी।
0: क्योंकि अगर हम 100 डायबिटीज पेशेंट देखें एशिया में, इंडिया में, कश्मीर में, 100 में से 90 होंगे टाइप 2 डायबिटीज
1: जी।
0: लेकिन बाकी भी टाइप्स हैं, टाइप 1 है, अदर टाइप्स हैं, जेनेटिक टाइप्स हैं, मोनोजेनिक डायबिटीज हैं, और जेस्टेशनल डायबिटीज सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ जाती है
1: जी।
0: तो अगर हम टाइप 1 की बोलें तो उसमें तो बिल्कुल अक्सर लोग यंग होते हैं, 12-15 साल के, 20 साल के, उनमें तो जब शुगर एकदम बढ़ जाती है
1: जी,
0: तो उसके कारण उनको जो यूरिन में ये शुगर एक्स्ट्रा आ जाती है, क्योंकि किडनी जो है वो 180 तक आपकी शुगर को रख सकते हैं, 180 ज़्यादा होगी तो किडनी में से शुगर लीक होना शुरू करता
1: जी।
0: तो जब लीक होना शुरू हो गया तो ये अपने साथ पानी भी लेता है
1: जी,
0: तो इन लोगों को ज़्यादा पेशाब आता है
1: जी,
0: सो जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। तो ये है पहली सिम्टम जब बहुत शुगर हाई हो,
1: जनरली
0: टाइप 1 में होती है, टाइप 2 में नहीं होती है
1: जी।
0: पॉलीयूरिया के साथ क्या होता है कि जब आपकी पानी की मात्रा ज़्यादा खारिज हो गई, पानी आप लीक हो गया ज़्यादा, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, तो आपको प्यास लानी शुरू होती है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये दूसरी सिम्टम है,
1: सिम्टम है
0: हाई शुगर की। तीसरी, जब आप खाते हैं लेकिन ये यूज नहीं हो रहा, ये सिर्फ यूरिन से निकल रहा है, तो आप एनर्जी की कमी हो जाती है आपको, तो सेल्स में एनर्जी जाती नहीं
1: जी,
0: बिकॉज आपको इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन काम नहीं कर रही है, तो बॉडीज हंग्री, सेल्स है हंग्री हो जाते हैं, सेल्स को एनर्जी पहुंचती है, तो सेल्स की वही हालत हो जाती है जैसे किसी इंसान ने 2 महीने से खाना नहीं खाया, तो इनको भूख लगती है ज्यादा
1: जी,
0: तो ये पॉलीफेजिया हो उसको बोलते हैं
1: जी।
0: तो दीज आर 3 क्लासिक सिम्टम्स, ये डायबिटीज की 3 क्लासिक सिम्टम है, जिसको हम ऑस्मोटिक सिम्टम भी बोलते हैं, बट ये जनरली टाइप 1 में होती है, टाइप 2 में नहीं होती है, हार्डली 10% को ये सिम्टम होगी, और वो भी सटल। चौथी सिम्टम जो हमने देखा है टाइप 2 डायबिटीज में होती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, क्योंकि जब इंसान खाता है एनर्जी यूज होती नहीं, वो यूरिन के साथ निकल जाती है, तो उनको वेट लॉस हो जाता है
1: जी।
0: ऐसे तो अगर कोई भी कोशिश करता है वेट कम करने की, तो वेट कम करना बहुत मुश्किल है,
1: मुश्किल हो जाता है।
0: लेकिन यहाँ एक इंसान है जिसको वेट खुद ही कम हो रहा है, इसने कोई एफर्ट भी नहीं किया और खाना अच्छा खा रहा है, तो वेट लॉस इज अनदर साइन
1: जी।
0: तो टाइप 2 डायबिटीज में एक और कंसिस्टेंट सिम्टम हमने देखा कि वो इनको लैक ऑफ एनर्जी हमेशा होती है, खाना खा खा के इनको लगता है कि एनर्जी नहीं है, मूड स्विंग्स हो जाती है, ये कॉमन होती है
1: जी।
0: कुछ लोग बोलेंगे हाँ जी हमें रात को एक आध बार पेशाब आता है, नॉक्टूरिया जिसको बोलते हैं, बाकी और कोई सिम्टम होते हैं, लेकिन अगर बहुत टाइम ये शुगर अप डाउन हो जाए तो आपको विजन में ब्लरिंग हो सकती है, वो बोलेगा मेरी विजन, मेरी नज़र में थोड़ी कमजोरी आ रही है, या किसी वो ज़्यादा पर नहीं होता, किसी को इन्फेक्शन बार बार होते हैं, जैसे एक फोड़ा कमर में निकलता है उसको बोलते हैं कार्मंकल। नॉर्मली कार्मंकल एक सिंपल बॉयल होता है, बट इनमें कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो कार्मंकल अगर है तो ये भी डायबिटीज की निशानी है। इस तरह कान में जैसे फोड़ा आ जाता है, इसको बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, मेलानाइट ओटाइटिस एक्सटर्ना, वो फोड़ा बहुत हैवी हो जाता है, उसको सर्जरी करनी पड़ती है, ये डायबिटीज में हो सकता है। फंगल इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं
1: जी,
0: स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है, और बॉडी में तनाव जैसा आता है
1: जी, ये मेन सिम्टम्स
0: है इसके। या और किसी को स्पेक्स है तो उसका बार बार उसका ना ये नंबर चेंज होता है, इसको बार बार नया नंबर लगाना पड़ता है। और भी कुछ सिम्टम है बट कंसिस्टेंट सिम्टम कोई नहीं कि जिसकी बुनियाद पर इंसान समझ गए कि मेरे को डायबिटीज है
1: जी।
0: तो जानने के लिए आपको पहले अपने रिस्क जाननी है, क्योंकि ये डायबिटीज टाइप 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 90% वही होता है
1: जी जी,
0: अक्सर उनमें होता है जिनमें फैमिली में, खानदान में शुगर हो
1: जी,
0: माँ बाप को, भाई बहन को, अंकल्स को जेनेटिक टेंडेंसी हो
1: जी,
0: तो उनमें हमें हमेशा बोलते हैं आप, और आपकी रिस्क है तो आप रेगुलरली टेस्ट करो,
1: वक्तन फौक्तन टेस्ट करने की जरूरत है,
0: इससे पता चलता है
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें डायबिटीज की, हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज में आए रोज ये बीमारी जो है बढ़ती जा रही है, इसकी क्या खास वजह है? आप एक मारूफ मालिज है और तजुर्बा है आपको, और मुझे ये भी बता दीजिए साथ में ही कि, और जो हमारे

0: आमीन है उनको बता दीजिए, पहले दौर की अगर हम बात करें 10-20 बरस की बात करें, तो उस वक्त के दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम समझने के लिए हमें पहले समय ये क्यों हो गई
0: है? जी सही बात है,
1: तो तभी हम उस प्रॉब्लम का समाधान या सोल्यूशन
0: निकाल
1: सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि अब डायबिटीज पहले था ही नहीं तो अब कैसे आ गया?
0: सही बात है,
1: अगर था तो बहुत कम था।
0: जी,
1: तो बेसिक वजह हमारे जीन्स हैं, हमारे जो जीन्स हैं वो अडाप्ट हुए थे एक ऐसी लाइफस्टाइल के जिसको बोलते थे हंटर गैदर लाइफस्टाइल। उसमें क्या होता था कि इंसान को मेहनत करनी पड़ती थी खाना हासिल करने के लिए।
0: बिल्कुल,
1: खाना ऐसे जैसे आज आप ऑर्डर करते हैं और आपके दरवाजे पर आता, ऐसे नहीं आता था खाना।
0: जी सही बात,
1: उसके लिए आपको शिकार के लिए जाना पड़ता था,
0: तभी उसको शायद पहले कहा जाता रिच मैनस डिजीज।
1: यस, तो शिकार करने जाना था या उसको खेती बाड़ी करने जाना था तब उसका वो खाना बनता, या कार्बेट, तो उन दिनों तो क्रॉप्स होते नहीं थे उतने।
0: जी,
1: फूड टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, मशीन नहीं थी, बहुत ज़मीन सख्त होती थी, उसको बड़ी खुदाई करनी पड़ती थी, फिर बीज बोना पड़ता था, फिर उसको मेहनत करनी, फिर उसकी किस्मत अच्छी रही तो बारिश हुई तो फसल आती थी, तब उसको खाना मिलता था। ठीक है
0: जी जी,
1: इसी तरह अगर वो वाइल्ड बेरीज के लिए जाता, हनी के लिए जाता, उसके लिए उसको कहीं पर चढ़ना था, पहाड़ पर चढ़ना था, दरख्त पर चढ़ना था, या शिकार करना था तो उसको चलना था।
0: जी,
1: तो उसमें क्या होता था कि वो पहले वो एनर्जी खर्च करता था, उसके बाद उसको आती थी, तो अक्सर एनर्जी डिफिशिएंट रहता था।
0: जी,
1: तो बॉडी ने, जीन्स ने एक अडाप्टेशन की कि उन्होंने एनर्जी बचाने का एक तरीका ढूंढा जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि जो ब्रेन है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनको ग्लूकोज चाहिए।
0: जी,
1: ये ग्लूकोज के बारे काम नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो हमारा मेन कंज्यूमर ऑफ एनर्जी है, जिसको एनर्जी, वो है मसल, क्योंकि हमारे कोई भी काम करना है तो मसल यूज करते हैं, तो मसल को चाहिए ग्लूकोज, लेकिन वो फैट से भी काम चला सकता है।
0: जी,
1: तो जैसे कोई गाड़ी ड्यूअल हाइब्रिड इंजन है, उसका डीजल पर भी चलता है और पेट्रोल पर भी चलता है, या पेट्रोल पर चलता है, गैस भी चलता है, इसी तरह हमारी मसल है वो हाइब्रिड इंजन है।
0: जी,
1: इट कैन यूज मसल, इट कैन यूज फैट एज वेल एज ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो चूंकि ब्रेन को हमेशा ग्लूकोज चाहिए, तो उन दिनों कार्बोहाइड्रेट की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो बॉडी के जीन्स ने हमने एक ऐसी अडाप्टेशन की कि जो मसल है वहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, वो मसल ग्लूकोज यूज नहीं कर सकता इजिली।
0: जी जी,
1: उससे क्या, जो उसको जो भी लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट आता था शहद की सूरत में, वाइल्ड फ्रूट्स की सूरत में, थोड़ा सा कल्टीवेशन होता था उसकी सूरत में, वो ब्रेन के लिए रहता था और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए रहता था, बाकी जो उसको मेन उन दिनों जो सोर्स था वो एनिमल्स से, तो एनिमल्स को शिकार करके उसमें मीट था, उसमें फैट था, वही यूज करता था फैट। ठीक है, लेकिन ये जब जमाना ऐसा आ गया कि एक तो हमारी एक्टिविटी बंद हो गई, क्योंकि अब हमारे खाना घर में ही मिलता है,
0: सही बात है,
1: हमें उसके लिए कुछ नहीं करना, पहले कम से कम मार्केट जाना पड़ता था,
0: सही बात,
1: कुछ लाना पड़ता था, फिर उसको पकाना पड़ता, थोड़ी इसमें एक्सर्शन होती थी,
0: ऑनलाइन
1: ऑनलाइन आपके घर में आ गया।
0: जी जी,
1: ठीक है, तो एक तो आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई, दूसरी जो फूड है ये प्रोसेस फूड है, ये एनर्जी डेंस है, ये फैट डेंस है, और वो फैट सैचुरेटेड फैट है।
0: जी
1: ठीक है, हम 3 S बोलते हैं, 3 poisons बोलते हैं, शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट, वो तीनों एसिस में है, हाई सॉल्ट है, हाई शुगर है और हाई सैचुरेटेड फैट है।
0: जी,
1: इसमें क्या होता है, ये डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि उन्हें जो कंपनीज बनाते हैं ये फूड्स, उन्होंने ऐसे किए हैं कि ये बहुत टेस्टी होते हैं।
0: जी,
1: टेस्ट बढ़ाने के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं इसमें जिसमें हमें और भूख लगे,
0: जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता।
1: तो हम ये जब क्विकली यूज करते हैं तो ये मोस्ट ऑफ टाइम्स इट इज कार्बोहाइड्रेट, अगर हम डाइट कोई भी ऑर्डर करते हैं ना तो उसमें 80% कार्ब होता है, 70% कार्ब, ये कार्ब ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है, जिसको ग्लूकोज शुगर बोलते हैं आमतौर पर। तो ये ग्लूकोज जब सेल्स में जाएगा तो उसको चाहिए इंसुलिन।
0: जी,
1: अब ये नॉर्मल अगर खाना खाएंगे तो इंसुलिन नॉर्मल हिसाब से आता है, लेकिन जब एकदम ऐसा फूड करते हैं जिसमें एकदम ग्लूकोज बन गया तो इसमें इंसुलिन स्पाइकिंग ज़्यादा होती है।
0: जी,
1: तो इंसुलिन स्पाइकिंग ज़्यादा हो गई तो उसके कारण क्या होता है, ये इंसुलिन लेवल बढ़ गई तो ये शुगर एकदम क्रैश हो जाता है।
0: जी,
1: तो आपकी शुगर एनर्जी लेवल्स क्रैश हो जाती हैं, आपको फिर भूख लगती है।
0: जी,
1: तो फिर खाते हो, फिर ये साइकिल रिपीट होता है। तो जब आपकी ब्लड में कॉन्स्टेंटली इंसुलिन हाई लेवल रहती है तो हम इसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया इज अ पार्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये इंसुलिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लेते हैं, चूंकि हम उधर से यूज़ नहीं कर रहे हैं, मसल्स यूज़ करते हैं लेकिन हम चलते नहीं हैं, तो बॉडी इसको फैट में कन्वर्ट करती है।
0: बिल्कुल,
1: ये फैट फिर लिवर में और बाकी ऑर्गन में जमा हो जाती है, پھر وہاں پر یہ

0: फैट में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, फिर उस फैट से ऐसे ऐसे साइटोकाइंस, ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसे कैसे जहरीले मादे निकलने शुरू करते हैं जो बॉडी को डैमेज करना शुरू करती है
1: जी।
0: और आपकी इंसुलिन बढ़ाती है, और अगर आप डायबिटीज़ है वो वर्सन हो जाता है, अगर आप प्री डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ हो जाता है, अगर आप नॉर्मल है तो डायबिटीज़ हो जाता है
1: जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या जो नौजवान है वो भी क्या इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं?
0: नौजवान शिकार हो सकते नहीं, हो गए हैं,
1: हो गए
0: हैं। एक ज़माना था जब इस टाइप 2 डायबिटीज़ को मैच्योरिटी ऑफ डायबिटीज़ बोला थे
1: जी।
0: मैच्योरिटी ऑफ इसको इसलिए बोलते थे कि ये 40 के बाद आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो मैच्योरिटी ऑफ डायबिटीज़ उसका दूसरा नाम फिर NADDM था।
1: ये कब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है इस वजह से हम पूछ रहे
0: हैं। 1997 से 1999 तक तहकीक की, हमने उसे सोचा भी नहीं था कि डायबिटीज यंग में होता, हमने सिर्फ 40 के ऊपर ले ली पॉपुलेशन, उनमें ही डायबिटीज देखा कि
1: एक मखसूस एज।
0: हाँ, तो उसमें हमने देखा कि 8% था डायबिटीज। सो 8% में से 2% को पता था हमें डायबिटीज है, चाहे वो दवाई खा रहे नहीं, 6% को नहीं था, लेकिन 75% को पता नहीं था डायबिटीज है जो हमने टेस्ट किए
1: जी।
0: तो हर 4 में से पता एक ही को डायबिटीज है, तो ओवरऑल हमारी 8% थी उस वक्त। पहले वो 6 थी, फिर जो क्राइटेरिया बदल गया तो डायबिटीज का, तो वो 8% बन गई। लेकिन फिर हमने देखा कि डायबिटीज अब यंगर पीपल में आ रही है, तो हमने दूसरी तहकीक की, वो हमने 2008-9-10 में पब्लिश की, डिफरेंट पेपर्स किए, उसमें हमने 20-40% पॉपुलेशन ले ली। तो उस पॉपुलेशन में हमने देखा कि ओबियसली उनमें तो उतना डायबिटीज, लेकिन था डायबिटीज 2.5% था, यानी कि 100 में से 250 को या 200 में से 5 को था डायबिटीज। बट कीपिंग इन व्यू, ये वो पॉपुलेशन है जो कौम को बनाती है। आप किसी भी साइंटिस्ट को लीजिए, किसी बिजनेसमैन को लीजिए, किसी भी ऐसे इंसान को जिसने कोई अचीव किया हो लाइफ में,
1: बिल्कुल
0: देखिए उसने कब किया वो अचीव, 20-40 साल की उम्र में।
1: सही बात है।
0: अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज एक्सपर्ट, लेकिन ये जो मैंने पढ़ा तजुर्बा किया मैंने 20-40 में ही किया, बाकी मैं इसका ही आप मतलब इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ।
1: बिल्कुल, नौजवान ही कौम का सरमाया हो।
0: तो उस पॉपुलेशन में ये डायबिटीज डाई को होना बहुत खतरनाक बात है। पर इसमें एक और खतरनाक बात थी कि 10 में से 9 को नहीं पता था डायबिटीज है, 1 को पता था। 9 को हमने जब टेस्ट किया ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तब पता चला, मतलब अवेयरनेस प्रॉब्लम थी उसमें
1: जी।
0: वो ज्यादा खतरनाक बात थी। एक और बात उसमें देखी कि हर 100 में से 25 लोगों को शुगर है 100 से 125, जैसे मैंने बताया वो प्री डायबिटीज है 100 to 125, तो उनको डायबिटीज नहीं थी लेकिन प्री डायबिटीज थी, यानी कि वो एक कगार पर खड़े हैं कि जहां पर कहीं भी वो एक्सप्लोर हो सकते हैं डायबिटीज एपिडेमिक में, पेंडेमिक में, ठीक है। तो वो एक ये थी, लेकिन वो हमने 20 से देखा। फिर मेरे को एक ICMR का इंसेंटिव है, उसको बोलते हैं YDR, यंग डायबिटीज रजिस्ट्री, वो उन्होंने 2011 में शुरू किया, तो फिर 2015 में उन्होंने हमें भी इनवाइट किया, मैं सिक्किम्स में उसका PI था। तो वो YDR सेंटर जब हमने क्रिएट किया, उसमें आइडिया था कि जो यंग डायबिटीज़ हैं जिनको 25 साल की उम्र से पहले उनका रजिस्ट्री बनाया जाए, क्योंकि वो कम होता है। तो उसमें एक्सपेक्टेड था कि टाइप 1 ही होगा, जो मैंने बताया टाइप 1 होती है इंसुलिन की कमी के कारण, तो है भी उसमें टाइप 1, बट उसमें क्या देखा पिछले 5-10 सालों में देखा कि अब टाइप 2 भी इसमें आ रहे हैं। टाइप 2 15 साल की एज में आ रहा है, 12 साल की एज में टाइप 2। टाइप 2 जैसे मैंने बताया इट इज बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी,
1: कल्चर भी है यहाँ।
0: तो अब हमारे पास जो रजिस्ट्री में तकरीबन 1000 से ऊपर ज्यादा बच्चे हैं, तो उसमें से हमें 20%, 1/5 लोग अब टाइप 2 के डायबिटीज के शिकार हैं। तो अब तो यंग क्या बच्चों में भी आ रहा है
1: जी। जी डॉक्टर साहब, हम इस मौजू के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस नगमे के बाद।

0: इसके बीच में अगर उस लोई के बीच में हम रात आराम करांगा सो जाना
1: ठीक
0: और इस ओन को वो जो बाल है हमारा जिस्म के नाल लगतो रहेगो
1: जी।
0: सियाणा यह कहें कि काफी बीमारी इस आदमी के नजदीक नहीं आती।
1: अच्छा
0: बिल्कुल इसने छू से भी नहीं हुई बीमारी या ओन के बीच में खास एक ऐसी एक चीज पाई जाए
1: हम देखा ना अक्सर इतना हमारा पुराना लोग था
0: जी जी जी
1: वी तो ये बाजारी का बिस्तर है कम्बल है बाकी चीजें उन्हें इस्तेमाल नहीं करें था वी ज्यादातर इन लोहियों को इस्तेमाल करें था।
0: लोहियों का इस्तेमाल में बुजुर्ग ते भी सुने हो तो खास कर मैं अपना जो बचपन ते लेके इस वक्त तुनी जे कुछ मैं देखियो है कि बेहतर मैंने यह चीज लगी है कि जिस दिन ओन की लोही में सो जाऊंगा
1: अच्छा
0: तो जनाब के मैना त्रै चार दिन तक मेरा वह तासीर उसकी रहे और मेरो रूह भी ताजो रहे नाल नाल यह चीज है कि मैं ना बिल्कुल हूँ ठीक ठाक रहूं है सेहत भी ठीक ठीक रहे मेरी रूह भी ताजो रहे जिस दिन बिस्तर में आराम करूंगा रात उस दिन मेरा कोई ऐसो महसूस है जैसे कि किसी आदमी ने प्रेशर हुआ ना
1: अच्छा बेचैन रहे
0: बेचैन भी रहे तो और को थोड़ी जान भारी लगे इस
1: बिस्तर में
0: जी जी
1: बड़ी प्यारी गल थारा ते हमने सीखना मिली ते इसके अलावा एक तो होगी लोई फिर चादर और कंबल भी बने उनका
0: जी जी बिल्कुल कंबल बने जनाब इसका इसका फेरन वास्ते पटू बने बने गुलाबंद बने जनाब इसका टोपी बने जनाब इस पटू अच्छा। की जिड़ी वे गोल टोपी हो
1: जी
0: वे बने दूरी टोपी भी बने मुख्तलिफ अच्छा। किस्म की टोपी बने इसकी
1: नमदा भी बनाया था पहला
0: बिल्कुल नमदा भी बने जी इसका उनका जरा नमदा बने तो बहुत बेहतरीन हो बड़ा अच्छा हो
1: तब कड़ी चीज बना दी
0: हूँ जनाब चादर बनाऊ है गुलाबंद बनाऊ है पट्टू बनाऊ है लोई बनाऊ है तो नमदो नहीं बढ़ा तो जनाब नमदा की मैंने जांच है लेकिन नमदो में
1: अच्छा डिमांड भी घट रहती है
0: नमदा की डिमांड भी घट गई है
1: ठीक
0: डिमांड वैसे घटा है इस चीज की ये चीज है कि हूं इसना अपना घाटा दर देखा आपने इस चीज ने सट तो नहीं
1: कमल में तो चादर में फर्क है
0: कमल में तो चादर में जो फर्क है जनाब कमल के बीच में त्रै किस्म का तागा इस्तेमाल किया जी
1: ठीक
0: तो पूरा वो जो कमल है वह यही चादर है लेकिन वो पूरा डबो हो जाए जनाब
1: जी।
0: चादर जिड़ी वे इसने आगे पल्ला कलिया चीन तो बाकी यह प्लेन वे एक रंग की
1: ठीक
0: जी जी जी
1: फरीद साहब थारा को ये दूसरा किस्म की चादर नजर आने लगी काली है गोरी है चिटी है इसके अलावा भी और किस्म की चादर है रंग के हिसाब की गल करा
0: यूनुस साहब इसके बीच में जो रंग सटा है आम रंग अगर सटा तो ऊंचा तो नहीं की इसके बीच में रंग सटी डुप्लीकेट हो जाए अलबत्ता इसके बीच में अपना इस कसब के हिसाब के बीच में हूँ काली ओन
1: जी
0: उसको पेटो बढ़ा लियो
1: ठीक
0: ते चिटी ओन को ताणो बढ़ा लियो
1: जी
0: ते फिर उसने चश्मे बोल के जनाब
1: अच्छा
0: तो वह चादर बढ़ाऊ चश्मे बोल के उस चादर ना तो वह चश्मे बोल बन जाए
1: जी
0: ते

0: अगर फिर भी हम इस चादर ना किते हम टोका में चला पथरा ला पेड़ा नाल चला इसना ऊपर लिया इसना एट सटा इस जाके मुंडा सट लिया जंगल में बूटो है जाड़ी है कंडा है ते मिन लगे कि ता भैया 30-35 साल कड़े
1: बहुत बड़ी उम्र है
0: दे वो जो कमल है वो सीजन ही कवागो बल्कि रजौरी के मारा बुकरा कमल खरीद गए थे रुख करे जम्मू इस मारा इस कश्मीर की ऊंची ऊंची टोका मा
1: जी
0: ते वापस वो कमल नहीं चलता इना के नाल
1: अच्छा
0: बेशक मैं खुद भी कम्बल देखे है हम भी लेके गए हैं लेकिन हमारी उसकी वह सीजन ही निकला
1: जी
0: तो जी चादर है तो चादर जी है या बिल्कुल एक आदमी की उम्र कट है
1: जी ज्यादा डिमांड चादरों की कि आजकल लोहिया की है
0: चादरों की ज्यादा डिमांड हो गई है जी जी चादरों की ज्यादा डिमांड
1: आप अक्सर देखा था जो हमारी शादी ब्याह है
0: जी
1: या करो कई और तकलीफ है जिसमें मजहब किस्म का हमारा लोग है बरादरी का बड़ा लोग है वे चादरी लेके मतलब इन शादियां में ब्याह में इन तकरीबा में इन फंक्शन में चले तो वह अलग ही किस्म की रौनक लगे
0: यूनुस साहब जी चादर है तो चादर में देखिया वे तो होना भी चाहिए हमारा जो कल्चर है इसके बीच में मैं देखिया ब्याह शादियां में दो चीज तो बड़ी सोहनी लगे
1: ठीक
0: एक मारो पटको जिसना के
1: जी
0: ते चादर जिसना के
1: ठीक
0: जो बंदो इस पटको बाद के ते चादर न मुंडा पर साट के या चादर न टाके
1: जी
0: ते वो किसी जांज में निकल जाए ते वो बंदो जो ते वो सौ बीचो अलग ही निकले ते और हजारा की उसी पर नजर जा खड़े
1: जी
0: बाकी पर नहीं खड़ती
1: सही गल है
0: ना ना बाकी आम हो ना
1: जी
0: यो न लोका में एक खास लगे
1: ठीक
0: इस ना मारा दूजी बरादरी का लोग जड़ा है वे भी इसी पर नजर टिकाए अपनी बरादरी का जड़ा लोग है वे भी इसी ने देखे देखो जी इसके को चादर है बड़ी फुला वाली चादर है इसकी लुंगी है जी बड़ी जबरदस्त करके खांडर सोना लगो हुआ है इसने पला सोना लाया हुआ है यो जो मारो पुरानो जो रवाज है तो यो बहुत सोना
1: है फरीद साहब एक हमारा जो लोग है ना वे चादरा ना ऊपर ले ताकि ठंड से बच सके सर्दी का बच सके सियाल का मौसम दूजे अक्सर आप देखा लगा कि बरिया की रुत में भी कई लोग जोड़ा है बड़ा मस्त किस्म का लोग है तमने क्योंकि जोड़ा बरादरी का अच्छा लोग है वे रवाज का तौर पर चादर ले जाएंगे आप थोड़ी पतली जीव है क्या फर्क है इस मोटी होती पतली में
0: पतली जी चादर है तो पतली मारी
1: शौकिया तौर पर ले ली
0: मारा रवाज है
1: ठीक
0: यो एक ऐसा एक रवाज है कि अक्सर यूनुस साहब तो हमने देखा होगा कि मारी दूजी रियासत का कुछ लोग है जैसे बिहार को कोई मारा कश्मीर में आ जाए तो उन्होंने तौली हो एक बार
1: जी
0: जी जी
1: ठीक
0: तो वो अक्सर उनका मुंडा पर उनका सिर नाल अपना उस तौलिया ना नाल नाल लिया हुआ चले
1: जी
0: तो ऐसो ये हम भी यो समझा कि यह चादर मारी विरासत है
1: जी
0: मैं इसना बरिया का गर्मी का मौसम हल्की चादर ले लें लेकिन ले जरूर
1: ठीक
0: तो सर्दियों के बीच में थोड़ी मोटी चादर बढ़ा लिया जी आम ना सर्दी से बचाए
1: ठीक
0: चादर हमने रखनी जरूर
1: थारा कार के बीच तब इन यू कसम सीखियो कि और किसी ने भी सीखियो
0: नहीं जनाब मारा कार के बीच में सीखियो
1: जी
0: जी जी वाल साहब नला जान नसीब करा उसका गुजरन के बाद फिर वही करूं लगो
1: ठीक है थारा बच्चा का भी शौक है इस तरफ
0: बिल्कुल बिल्कुल मेरा जो बड़ा बच्चो है तो उसने बहुत शौक है इसकी
1: थारी हाथ बटाई करे
0: जी जी बिल्कुल हाथ बटाई करे मेरी मेरे मेरे ना
1: जी
0: तागा ते लेके सारो चीज ते अगर चादर बढ़ाते रहो तो वो तागो चढ़ते रहे
1: ठीक
0: शौक भी बड़ी है तो हूं या चाहूं कि ताकि वो
1: जो काम सीख लिया
0: जो काम हाँ सीख भी लियो है तो करते रहे
1: जी जी कुदरती देखो फरीद साहब
0: कई ऐसा लोग भी है कि जेड़ा क्योंकि ना जी इसके बीच में कोई खास मजदूरी नहीं कारोबार या नहीं जिसके बीच में रुपया दस काट आए यूनुस साहब इसका आम का कि ना जी रुपया दस काट आए रोजगार पूरा नहीं चलतो तो फिर आम इसने छोड़ दिया तो लगे यू कि अगर आम इसने छोड़ा तो आम फिर पूरी गुजर कौम का एक मारा ते एक चीज ही छोड़ के जाएगी
1: जी जी फरीद साहब देखो ना आजकल बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है
0: जी
1: तो यू एक खैर तब कार में रोजगार है जिस वक्त तम बनाए थारो बच्चों बनाए थारा कार का भी और मतलब चरखो चला लो या उन तो मुनी या बाकी काम कार कर लो पूरा ढेरों इसमें मुलावस हो जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल मेरी बच्ची वे भी इसके बीच में किसी वक्त मेरा ना हाथ पटाई करे कोई ओन तोम लिया कोई आम टसरी का जी एक लकड़ी एक इनको पर तागो चढ़ना पे
1: जी
0: का दूजी बच्ची उसना वो तागो चाड़ दे काहे चरखा के पीछे हो जाए काहे ओन तो छुड़े
1: जी
0: कोई चादरों के

0: जिसने ये बम्बल कहा काय मारा कार के बीच मकाय बैठ की बम्बल बोट बोंड ले है। अगर काय ऐसी चादर की शौक है जी उसका बमला ना फूमड़ी लानी है ना वे फूमड़ी ला ले तो सारा इलाक बागाम कार का इसके बीच में लगा रहा।
1: कोई भी अगर खरीदार आए तो वो किस किस्म की डिमांड करता रहे मतलब इस किस्म की तब अपनी मर्जी ना बढ़ाए कि नहीं खरीदार की मर्जी देखो
0: ना खरीदार की मर्जी के मुताबिक बढ़ाऊं जैसे खरीदार कह के मैंने गूरी चादर लोड है चिट्टी लोड है काली लोड है इतना पल्ला होना चाहिए इतनी कात होनी चाहिए उस हिसाब के बीच अगर हूं दो चार पीस चादरा की जड़ी ज्यादा एक करके बढ़ा के राख छोड़ू की कोई दूर पाक कोई मजबूर हो तो वो तो खाली ना चले
1: कित कित का लोग आके थारा ते चादर की डिमांड करे या थारा ते चादर नहीं
0: यूनुस साहब मेरा ते पौंछ रजौरी का लोग ले चले चादर बाकी अपनी कश्मीर की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का लोग जो ले चले चादर मेरा को अक्सर लोग आए ले चले
1: डिमांड टिकी रहे साल भर
0: डिमांड मेरी पूरी टिकी रहे जनाब जिड़ी हूं चादर बनाने लगो तो इस चादर की हर दूजी सुबह में ना दो चार फोन
1: अच्छा
0: आए जे कि मैं इस कलर की चादर लोड़ है या काली चिट्टी वे चादर की डिमांड जिड़ी है वे वही जनाब
1: अगर आम हालात में देखा एक चादर जिड़ी है उसकी कितनी कीमत तमाशी कर ली
0: एक चादर की कीमत मारे को चादर त्रै कीमत पर चले खर्चा के हिसाब पर चादर की कीमत है एक चादर आम वह बड़ा कि जिड़ी चादर आम ना पारुआ ना चल गया या टोका में चल गया बारिश से बचना या
1: आम चादर
0: आम चादर गर्मी वास्ते थे उस चादर की 4-4.5 हजार रुपये कीमत बने उसकी खर्चो उसके ऊपर इतना आए
1: जी
0: जिड़ी का बड़ी शौकीन चादर वह तो अच्छी थी अच्छी चादर 12-14 हजार रुपया तुमने अच्छा। चादर बढ़ाऊ
1: इस किस्म का शौकीन मारा लोग भी आके इस किस्म
0: बिल्कुल जी बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल आते ज्यादा ऐ भी शौकीन है बड़ा बड़ा लोग है मारा पौंछ रजौरी का बड़ी बड़ी पोस्टा पर है इस वक्त जरा लोग मेरा चादर चले अपना कंगन का काफी ऐसा लोग है की जरा चादर हूं अगर 12 हजार रुपया के खर्चो की हो वो चादर वेगो तो वे आए अगर उन्होंने 12 हजार की हो तो 12 हजार रुपया की बजाय वे 1 हजार रुपया एक्स्ट्रा में ना एक इनाम के तौर दे के चादर ले चले
1: शौक कोई मोल नहीं
0: शौक कोई मोल भी नहीं
1: जी जी जी
0: जब में चादर ऐसी भी बढ़ाई है जनाब की जिड़ी की हद से ज्यादा
1: अच्छा खूबसूरत प्यार
0: बहुत खूबसूरत मेरा पीर अल्ताफ साहब दो त्रै फेरी चादर ले गया थे एक चादर वास्ते उन्होंने मिना एक गां दी लायरी बख्शीश
1: जी
0: नाले जिड़ा उस चादर के जिड़ा पैसा था जो खर्च हो वी लाकड़ना के आना खे के दी तेना तो फिर एक गां दी मिना
1: अच्छा
0: बख्शीश कि यह बहुत प्यारी चादर बढ़ाई है तो बहुत सोहनी चादर बढ़ाई है आज भी किते किते वे
1: ले लेता
0: उस चादर ना ले लें
1: अच्छा जी बहुत अच्छो देखो ना यह असल के बीच जड़ी इज्जत है या सिर्फ कसम ना है ओनर ना है
0: ओनर ना जना जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक जिस वक्त हम खैर तब चाहते अपने कार के बीच बढ़ाए
0: बिल्कुल कार में बढ़ाए
1: कोई मखसूस टाइम है कि नहीं ज्यादा मर्जी आई या ज्यादातर इसी काम पर बहस
0: जनाब जिस वक्त मर्जी आई अगर जिम्मेदारी की टाइम चला लगो तो अपनो काम करने लगा जिस वक्त फुर्सत आई तो चल जी चादर पर बहस जो बेड़े बारिश है तो अंदर बहस जो चादर बढ़ाओ या गर्मी है बेड़े गर्मी का मौसम के बीच में ज्यादा धूप है और कहीं मजदूरी नहीं कई चीज नहीं थे अंदर वांदोरी पर बैसो काम की तैयारी चलेगी
1: जी यदि इसके बीच चाहे बारिश है बर्फ है ठंड है गर्मी है कोई मसलो नहीं
0: कोई
1: मर्जी तब अंदर बैस
0: ज्यादा मर्जी चले जाओ जी इसको यू भी कोई टाइम नहीं कि इसमें एक घंटो काम करो
1: जी
0: यानी कि सुबह बैसो शाम तुम करता रहो ना जी अगर एक घंटो काम करो तम कोई दूजो काम आ गई हो कि दुकान पर चलना हो मेजमान आ गयो उठ जाओ बहस जाओ वो इस पर नहीं है
1: थकावट वाली गल भी नहीं
0: थकावट वाली गल नहीं बड़ा अच्छा होता बड़ो एक आराम को काम है बहुत अच्छो एक साइड ते चादर बुन तो रहो तो ना एक साइड ते रेडियो वे
1: अच्छा
0: रेडियो पर हूँ गजल सुन तो रहो या अपनो गोजरी प्रोग्राम वे जिस वक्त उस वक्त हूँ ज्यादा है बड़ो एक रूह मेरो ताजव है
1: अच्छा
0: सोना गोजरी गीत या बैत लगा रहे तो उस वक्त में ना अगर घंटा को काम है तो उसके बीच में आधा घंटा में दो घंटा को काम में कर दी तो बड़ो एक रूह लगो रहा
1: क्या बात है और भी कोई ग्राहक कोई नौजवान इस तरह मायल

0: पर चिन्ह त्राम करनो
1: ठीक
0: ना ठा के ते फिर वो ये चीज मारी वांदोरी पूरी करके तैयार करके दे ते उसने इंगद्रो क्योंकि तरखान को यो कसब नहीं की तरखान नहीं ये चीज नहीं बढ़ाई भी बल्कि मकान बढ़ाए बाकी चीज बढ़ाए ये चीज बहुत एक आर्ट है
1: जी।
0: मैं पिछली या वांदोरी जी है या मैं नोई पहला मेरी प्राणी हो गई थी
1: तो फिर सब चलता चलता था ये दाह भी दस्त करना इसके बीच जड़ी जड़ी ये लकड़ियां का क्या कहना है
0: यूनुस साहब इसकी लकड़ियां का मुख्तलिफ किस्म का ना है
1: जी।
0: इसकी पहला तो हम इस ना वांदोरी का तो वांदोरी के ऊपर एक इसका ये चार पाया जरा दिसन लगा ते ये खड़ा करके कोई जी टेढ़ी लकड़ी ये सर करके तो ये जो ढांचो इसको बने हो तो इस ढांचा नाम वांदोरी का। इसके अलावा जरा ये जरा मारा तागा शागा जिसके बीच हमने पास कर इस नाम डुलू ये जी तला की लकड़ी है इस नाम डुलू का
1: ठीक
0: तो ओपोर की जड़ी लकड़ी है तो इस नाम हथौड़ो का बाकी जड़ी ये तागा की जड़ी सीन है ऊपर तला जड़ी चेंज करें इस नाम सीन का
1: ठीक।
0: इसके ऊपर जड़ी छोटी छोटी लकड़ी लगी हुई है तो इन्हें नाम फिरकी का है
1: ठीक
0: जी जी
1: त्रम करो
0: तो और वह जी त्रम उसने कहा जड़ा ये खड़ा पाया मैं इसके बीच में जड़ा साल किया मैं गोजरी में इसने गोज के
1: ठीक
0: तो आज का लोग इसने त्रम के
1: जी
0: जिसना त्रम बिके चूंड बिके गुज बिके
1: अच्छा।
0: इसकी त्रै चीज त्रै बोली
1: ठीक
0: जी जी जिस तरह की एक पट्टी बड़ा तरखान
1: जी
0: ते पट्टी के बीच में टेढ़ो लार साट कहते या पट्टी ने खड़ी करे इसे शान जो साल जड़ो है इसके बीच में टेढ़ी जीड़ी लकड़ी लाई हुई इसे नाम त्राम का
1: जी
0: जी जी। उसके अलावा ये जी मेरे को बाकी सामान है इसके बीच में कुछ बाई है कुछ टसरी है जनाब
1: ठीक
0: ये इस किस्म की खासी लकड़ियां हैं तो ये जमा कर के तो फिर इसना फिर हम वांदोरी का सारी ने जमा कर के
1: जी
0: जी जी।
1: आफरीद अहमद खटाना साहब थारो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपना हवाला नाल को जानकारी दी थी और खास तौर कार कसम की गल की कि चादर किस तरह बने लोही किस तरह बने ते किस तरीका के नाल तुमने सीखी और रहता नौजवान भी अगर इस तरफ मायल हो जाए कोई ना कोई कसम सीख लिया उधर सीख लिया तो भी कभी बेरोजगार नहीं रह से अपनी ये रोटी रोजी है वे इज्जत नाल कमाएगा। आखिर पर फरीद साहब थारो एक बार बहुत बहुत शुक्रिया
0: जजाक अल्लाह जी थारो को बहुत बहुत शुक्रिया
1: वालेकुम
2: सामीन तम इंटरव्यू सुन रहा था उनवान कारकसब यू इंटरव्यू मारे तक पहुंचायो मोहम्मद यूनुस खालू खेल साहब और उन्होंने गल की थी फरीद अहमद खटाना और आज का प्रोग्राम को वक्त मुकरना आयो प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेजबान शबीर अहमद पुसवालना दियो इजाजत अच्छा जी रब राखो।

समीन आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक वानी। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समीन शाम के 5:50 हो रहे हैं, आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।

आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। गोजरियों को खबरों को बुलेटिन ले गए हूँ शाजिया कसाना हाजिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरा मुल्क में मुस्तकबिल वास्ते इम्तिहान में पेपर लीक बचाउन वास्ते एक हो गए कोशिश करन पर दितो जोर। मुख्तलिफ मामलात न ले गए हिजब इख्तिलाफ का शोरगुल की वजह नाल पार्लियामेंट का दो ऐवाना की कार्रवाई आज भी रही मुतासिर। जम्मू कश्मीर में 100 दिन पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान खत्म। मंशियात के खिलाफ मुनज्जम कोशिश रहेंगी जारी, एलजी मनोज सिन्हा। ते वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोरान पुंछ में पसी आउन की वजह नाल मारे गया 7 अफराद का वारसा का हकमा 6-6 लाख रुपया एक्स ग्रीशिया।

0: श्रीनगर ते सुन रहा है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ जिला का नदीचूल लोरान इलाका में दो मील टोक में एक पसी आने की वजह नाल सात कीमती जाना का ज्यां पर दुख और सदमा को इजहार करता हुआ मुतासरा कुंभा गैनार यकजेती को इजहार किया है। वजीर आला ने मारा गया अफराद का वारसा वास्ते फीकस 6-6 लाख रुपया एक्स ग्रीशियर रिलीफ को ऐलान किया है। इस रकम विचू 4 लाख रुपया SDRF जबकि 2 लाख रुपया वजीर आला का रिलीफ फंड ते वागुजार किया जाएगा। वजीर आला ने काबिनी वुजरा जावेद अहमद राना और सतीश शर्मा ने हिदायत दी है कि वे राजौरी और पुंछ जिला में मुतासरा इलाकों को दौरा करें। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर ने रियासती दर्जो जल्द अज जल्द बहाल करना चाहिए। दिल्ली से वापस आने के बाद आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करने को यकीन दुआया है और उन्होंने यो वादो अपनों जल्द अज जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे स्टेट की बहाली वास्ते जदोजहद जारी रखेगा। शहर श्रीनगर समेत वादी का दूजा इलाका में आज चाड़ रही और वादी का मुख्तलिफ इलाका में वक्फा वक्फा नाल बदल भरण की इतला मिली है। इन बदलों नाल लोगों ने गर्मी की शिद्दत से राहत मिली मगर बदलों की वजह नाल गली कोचों और सड़कों में पानी आने की वजह नाल लोगों ने दिक्कतों को सामना करना पै लगो। आवामी हलका ने इंतजामिया से मुतालबो किया है कि पानी न कढ़ने वास्ते सूदबंद कदम चाहना चाहिए। मौसम के मुतलिक महकमा मौसमियात की पेशनगोई का तनाजर में श्री अमरनाथ की यात्रा ना आज भी मुअत्तल रखो गयो। मारा कुलगाम का नुमाइंदा ने इतला दी है कि आज भी किसी भी यात्री ने जम्मू ते श्रीनगर आने की इजाजत नहीं दी गई। यात्रा की बहाली को फैसलो मौसम में बेहतरी आने के बाद ही लियो जाएगो। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्ग ने कहा है कि इंतजामिया उभरती हुई मौसमी सूरत हाल का तनाजर में लोगों ने राहत पहुंचाने वास्ते तैयार है। कुलगाम में एक तकरीब में मारा नुमाइंदा खुर्शीद पडरू के नाल गल करता हुआ उन्होंने कहा कि तमाम जिला में कंट्रोल रूम कायम किया गया है और लोग जरूरत पेण पर इनते राबतों कायम कर सकें।
1: कंट्रोल रूम्स एक्टिव हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी टीम्स को एक्टिव किया है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स एक्टिव किए गए हैं, लोगों तक हेल्पलाइन नंबर्स पहुंचाए जा रहे हैं, वेदर एडवाइजरीज भी सर्कुलेट की जा रही हैं, जैसे आज और कल के लिए साउथ कश्मीर के लिए खास एक वेदर एडवाइजरी जारी की गई है जिसके लिए लोगों को भी इतला किया गया है कि वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की और उसके आसपास नालों की से थोड़ा सा दूर रहें, उसमें वेंचर आउट ना करें। स्कूलों की छुट्टियां पहले से ही बुधवार तक अनाउंस कर दी गई हैं और उसको भी डिपार्टमेंट रिव्यू कर रहा है। इसके अलावा जो एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पावर है, हमारे वाटर सप्लाई है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सभी की टीम्स भी हाई अलर्ट मोड पर हैं। ओवरऑल कोशिश यही है कि जिस तरीके से इवॉल्विंग वेदर सिनेरियो है उसके हिसाब से भी अब रिस्पॉन्ड करें और जो कंट्रोल रूम्स हैं वो भी कंटिन्यूसली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो ये वेट वेदर स्पेल है उसको हम बेहतर तरीके से निकाल सकें।
0: चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज अनंतनाग में उमा नगरी ब्रियारांगन शांगस में माता उमा भगवती स्थापन को दौरा किया। उन्होंने उत कैलाश पूजा और दूजी रस्मों में हिस्सा लियो। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन तरक्की और खुशहाली वास्ते प्रार्थना की। इस मौके पर अनंतनाग का डिप्टी कमिश्नर डॉ बिलाल मोहियुद्दीन भट्ट और कई दूजा आला अफसर भी मौजूद था। हमारा नुमाइंदा तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि इस तकरीब में जम्मू कश्मीर का मुख्तलिफ इलाकों से आया हुआ पंडित बरादरी का लोगों ने शिरकत की। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 वास्ते दरख्वास्त जमा करन और कुरा अंदाजी की आखिरी तारीख में तोसी कर गए इस न 24 जुलाई तक बधाया हुआ है। इस सिलसिला में जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉ शुजात अहमद कुरेशी ने दस्यो कि जम्मू कश्मीर ने अगला साल हज वास्ते 8,000 निशिश्त मिली है मगर हूं तोड़ी लगभग 3,000 दरख्वास्त मिली है। तय इसके नाल ही गोजरी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो। दियो इजाजत, रब रखो।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक

0: मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसिडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम 5 मिनट सपिद पेश खदमत प्रोग्राम गर्मी बाई नहीं खतरे।

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم.

0: पिट सब्सटेंसेस सीज 46,577, डिटेंशन अंडर पिट एंड डीपीएस 127, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड 331, प्रॉपर्टी अटैच्ड 188.89 करोड़, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज डिमालिश 92, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिमालिश 28.40 करोड़, हॉट स्पॉट फोकस्ड अवेयरनेस इसमें फिगर है 4474, लेकिन अवेयरनेस के लाखों प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रशासन की ओर से, विभिन्न विभागों की ओर से, सिविल सोसाइटी की ओर से लोगों ने किए।
1: मनोज सिन्हा ने 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के दौरान गिराकदर खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी अफसरान, महलकारों और दीगर लोगों की इज्जत अफजाई भी की। इस मौके पर महकमे इतलात की जानिब से नशाखोरी से मुतल्लिक तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री के अलावा महकमे समाजी बहबूद और इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर चैप्टर के जरिए तैयार करदा वीडियो मॉड्यूल भी पेश किए गए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए मैं शेख तजम्मुल। अथ तकरीब पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलीन प्रभात तो कें दोम आला अफसर तौजूद। श्रीनगर शहर से रूद आज वादी हंदन दोमन कस्बन मज उबर नब तो वादी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज रुक रुक कमकास रूद पेन इतला मौसूल सपदमित। रूद किन मीज लूकन गर्मी निश राहत, वो गो बारिशी किन खोद गली कोचन तो सड़कन आब, यम किन लूकन फेरनस तोड़नस मज मुश्किल वेतन पेवान। अवमी हल्को इंतजामिया मुतालबा कोरमुत आब नबर कड़ने बाबत गसन इख्तराई तो सूदमंद इकदाम करने इन। मौजूद मौसमी सूरत हालस मुतलिक वो श्रीनगर मौसमियात महकमिक डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमदन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर।
2: ऑलरेडी जैसे इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट एडवाइजरी ऑलरेडी इशू किया है, 23rd फोर नून तक ये एक्टिविटी जो है रहने के चांसेस हैं, और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी से लेकर वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं, बिल्कुल हैवी इंटेंस शावर शॉर्ट पीरियड में, और उसके साथ साथ यहाँ वैली के अंदर भी तेज बारिशें अभी नॉर्थ पार्ट, सेंट्रल पार्ट और साउथ कश्मीर के कुछ जो अपर कैचमेंट्स हैं यहाँ पे तेज बारिशें हो रही है, तो ये एक्टिविटी थोड़ा सा रहेगा, इवनिंग से थोड़ा कम होने के चांसेस है, और कमिंग डेज में भी खासकर भी जो है सिमिलर एक्टिविटी वेदर एक्टिविटी के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे हैवी शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है, कुछ एक जगहों पे जो है चिमली या हैवी से लेकर वेरी हैवी तक की भी बारिश हो सकती है खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, तो इसमें फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मड फ्लैड, शूटिंग स्टोन्स, रॉक फॉल ऐसे चांसेस बहुत है, क्योंकि मुसलसल पिछले 3-4 दिन से बारिशें वक्त वक्त हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो 24th ऑनवर्ड मौसम में ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखी जाएगी।
1: डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्गन वोनम इंतजामिया मौजूद मौसमी सूरत हाल नजर तल थ लूकर राहत वातन बाबत तैयार। कुलगाम वो तकरीब के अके पास आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर तमो तमाम जिलन में कंट्रोल रूम कायम करने आम तो लूक हेकन जरूरत पेनस पे सबत कर।
3: कंट्रोल रूम्स एक्टिव हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी टीम्स को एक्टिव किया है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स एक्टिव किए गए हैं, लोगों तक हेल्पलाइन नंबर्स पहुंचाए जा रहे हैं, वेदर एडवाइजरीज भी सर्कुलेट की जा रही हैं, जैसे आज और कल के लिए साउथ कश्मीर के लिए खास एक वेदर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके लिए लोगों को भी इतला किया गया है कि वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की और उसके आसपास नालों की से थोड़ा सा दूर रहें, उसमें वेंचर आउट ना करें। स्कूलों की छुट्टियां पहले से ही बुधवार तक अनाउंस कर दी गई हैं और उसको भी डिपार्टमेंट रिव्यू कर रहा है। इसके अलावा जो एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पावर है, हमारे वाटर सप्लाई है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उन सभी की टीम्स भी हाई अलर्ट मोड पर हैं। ओवरऑल कोशिश यही है कि जिस तरीके से इवॉल्विंग वेदर सिनेरियो है उसके हिसाब से भी रिस्पॉन्ड करें, और जो कंट्रोल रूम्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो ये वेट वेदर स्पेल है उसको हम बेहतर तरीके से निकाल सकते।
1: जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साझा राजौरी तो पड़ोस जिलन हंद जिला तरक्ती कमिश्नर सत कर हाल रूद सहलाब तो पस वसित यम कि रिहायशी मकान तो अवमी जायदाद सपदमित नुकसान साम। अकिस बयान में वो एल जी एन जी डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर तो आई जी पी जम्मू से जमीनी सूत्रस पे मौजूद। एल जी एन वो तमो तमाम महकमन हदायत दिखम जम दिन पान वन अथवा सान कम कर बचाव रिलीफ तो बाजाबत कर हंद इकदाम अहमियत। एल जी एन वो तम आई जानकारी दिन तबाह सपजम 435 सड़कों में 365 बहाल कर आम। एल जी एन से शहरियन अपील कर तम कर गैर जरूरी सफर कर निश परहेज तो कर इंतजामिया तरफ जारी कर आम एडवाइजरी पे सख्ती सान अमल। जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज पड़ोस जिले के नांदी चू नांदी कोल लोरान इलाक में दो मेल दोग जाए अख पस वसित यन कि सत्तन कीमती जुवन हंद जाय सपदन पे दुख तो अफसूस बवान असर जद आयाल सकजहती हूं इजहार कर्मुत। वजीर आलम कोर आज जान सपदमित नफर हंद वारिसदर हंद बापत फीकस 6 लाख रुपये एक्सक्रेशा रिलीफ एलान अमे रकम मज 4 लाख रुपये एस डी आर एफ यल जन 2 लाख रुपये वजीर आला सिंध रिलीफ फंड मज वागुजार कर वजीर आलान काबिना वजीर जावेद अहमद राना तो सतीश शर्मा से हदायत दिखम जम कर राजौरी तो पड़ोस जिलन मज मुतर इलाकों दौर। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जल शक्ति महकम किस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 6 करोड़ लोग 5 लक्षण तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तमाम 2 करोड़ इलाज सपद ये गरीब घरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ बचत सपद अव आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनो।

0: करने पर नुकसान पहुंचा है। ज्योरी जिला में गुज़श्ता रात से लगातार मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं, गरज चमक जारी है। एक बार फिर मूसलाधार बारिश के बाईस कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया है, जिससे मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। छोटी नदी नालों में पानी आने से मकामी लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कई घरों में पानी दाखिल होने से घरेलू साजो सामान को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतअद्दद इलाकों में लैंडस्लाइडिंग आने की भी इतला है, जिसके बाइस खड़ी फसलों, घास बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया की जानिब से एक रिलीफ कैंप भी बनाया गया है, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों के खाने और रहने का बंदोबस्त किया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से जिला सतह के साथ साथ तहसील और ब्लाक मकाम पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जिला इंतजामिया ने इमदादी टीमों को मुतहरक करते हुए मुतासर खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकल किया है। हुकाम ने दरियाओं, नदी नालों और लैंड स्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों के करीब रहने वाले लोगों को घरों में रहने, गैर जरूरी सफर से ग्रेज करने और तेज बहाव वाले आबी जहाज से दूर रहने की हिदायत जारी की है।
1: ये थे राजौरी से आरिफ महमूद। इधर पुंछ जिले में भी तेज बारिश के बाइस हुई लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में लापता लोगों की तलाश आज दिन भर जारी रही, जबकि पूरे जिले में मातम का माहौल है। जिले में इस वक्त भी तेज बारिशें हो रही है और सैलाब का खतरा बढ़ गया है। मुकम्मल रिपोर्ट केडी मैनी से।
2: तहसीलदार मंडी इशफाक हसैन ने शहरदीन को बताया कि ब्लाक लोरन की पंचायत एरी गांव की ढोक दोमेल में सख्त बारिश के दौरान कल सुबह एक धारा लैंडस्लाइड की जद में आने के बायस मुनहदिम हो गया था, जिसमें चार कुंभाजात के सात अफराद जहां भाग हो गए थे, जिनमें दो बच्चे, तीन मर्द और दो औरतें शामिल थी। उन्हें आज आबाई गांव एरी गांव में सुपुर्द खाक किया गया है, जिसमें जिला पुलिस और महकमा माल के आफिसरान के अलावा लोरन और दीगर इलाकों से अहम अफराद भी शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हलाक होने वाले अफराद के लवाकीन के हक में 4 लाख रुपए के हिसाब से रकूमात लवाकीन के बैंक खातों में जमा कर दी गई है और मुतासर खानदानों की दीगर मावनत भी की जा रही है। याद रहे कि 19 और 20 जुलाई की दरमियानी रात को सुबह 3 बजे दो मेल ढोक में एक पस्सी का मलबा खिसक कर धारे पर आ गिरा था और धारा मुनहदिम हो गया था। धारे में मुकीम 7 अफराद मारे गए थे, जिनके नाम ये हैं: कमसन मनियान रफीक, वल्दे मोहम्मद रफीक जिनकी उम्र 2 और 4 बरस थी, तनवीर अहमद वल्दे ग्राम मोहम्मद उम्र 22 बरस, जायदा परवीन जोजा मोहम्मद रफीक उम्र 26 बरस, शमीमा बानो वल्दे मोहम्मद रियाज उम्र 27 बरस, मोहम्मद इरफान वल्दे सुबहान डार उम्र 22 बरस और शमीमा अख्तर वल्दे अब्दुल मजीद उम्र 32 बरस। इतला मिलते ही ढोक के आसपास से लोग मौका पर पहुंचे और धारे में दबे हुए अफराद को निकालने लगे। तकरीबन 3 घंटों की मशक्कत के बाद 7 अफराद के जुस्ते खाकी हासिल कर लिए गए थे और उन्हें नजदीकी मुकाम सुल्तान पथरी लाया गया। इसी दौरान इतला मिलते ही जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ओम प्रकाश शर्मा ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू कदीर उल रहमान, तहसीलदार मंडी इशफाक हुसैन, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी, पुलिस पार्टी और SDRF की टीम को मौका पर रवाना किया और सुल्तान पथरी के मुकाम पर जहां जुस्ते खाकी रखे गए थे, वहां ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जहां भाग होने वाले अफराद के जुस्ते खाकी का मुआयना करने और दीगर कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जुस्ते खाकी को वारसीन के हवाले कर दिया गया, जिनकी आज आबाई गाँव एड़ी गाँव में तदफीन हुई है। इधर आज भी सारा दिन जिला पुंछ में तेज से दरमियाने दर्जे की बारिश जारी है। अभी तक 8 लापता अफराद की लाशों को वारसीन ढूंढ रहे हैं। दरियाए पुंछ में तुगियानी आने के बायस बंध के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। आज का दिन भी जिला पुंछ के मकीनों को बिजली और पानी के इंतजार में गुजारना पड़ा। पहाड़ी इलाकों से जमीन खिसकने, पसियां गिर आने और गाँव सतह की सड़कें मुतासर होने की इत्तला भी मिल रही है। इंतजामिया लोगों को घरों में ही रहने की अपील कर रही है, जबकि महकमा मौसमियात की पेशीन गोई के मुताबिक 23 जुलाई तक मौसम में तब्दीली के आसार नहीं लगते।
1: ये थे पुंछ से केडी मैनी। इस दौरान भारी बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बावजूद बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर बीजेपी के साबिक सदर रविंदर रैना ने पार्टी लीडरान के हमरा आज लोरन आरीगाम पुंछ का दौरा किया और वहां जमीनी सूरतहाल का जायजा लिया। उन्होंने गुजश्ता रोज मिट्टी के तूदे की जद में आकर हलाक हुए 7 अफराद के अजीज व अकारिब से मुलाकात की और तजियत का भी इजहार किया।
3: बहुत ही अफसोसनाक ये सारा सानिया हुआ है। सरहदी जिला पुंछ के लोरन का इलाका और नंदी शूल और सुल्तान पथरी के बीच एक खतरनाक

0: लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी जद में एक पूरा खानदान आ गया, 7 लोगों की जान चली गई, छोटे छोटे मासूम बच्चे महिलाएं वो इस लैंडस्लाइड की जद में आ गए। पूरे गांव में आज मातम छाया है, पूरा इलाका, पूरा पुंछ, रजौरी गमगीन है, दुखी है। माताएं, बहनें, उनके छोटे छोटे बच्चे, नौजवान इस लैंडस्लाइड की जद में आए हैं। भारी तबाही और बर्बादी यहाँ लोरन में हुई है। हम भी यहाँ इस ऊंचे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, भारी तबाही हुई है, पूरा इलाका गमजदा है। वो शब्द नहीं है, वो अल्फाज नहीं है जो आदमी इस सारे दर्द को बयां करने के लिए जो अल्फाज बोले, वो दर्द नहीं है। बहुत दिलदोस, बहुत खौफ ज़दा मंजर है, दर्दनाक मंजर है यहाँ लोरन में। यहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया।
1: ये थे बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मरकज ने राजौरी, पुंछ और डोडा अजला में हाल ही अचानक सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए हर मुमकिन ताउन और इमदाद का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस सिलसिले में उनसे तफसीली बातचीत की और यकीन दिलाया कि हुकूमत हिंद मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद देगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुदरती आफत में जान गंवा चुके अफराद को खराज अकीदत पेश करते हुए लवाकिन से भी ताजियत का इजहार किया। इधर वजीर आलम अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ अजला में हालिया बारिश, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में जान गंवाने वाले हर फर्द के लवाकिन के लिए 6 लाख रूपये की इमदादी रकम का ऐलान किया है। इमदादी पैकेज में 4 लाख रूपये SDRF और 2 लाख रूपये वजीर आला के रिलीफ फंड से दिए जायेंगे। ये ऐलान वजीर आला की सदारत में मुनक्कद इजलास में सामने आया है, जिसमें राजौरी पुंछ अजला में हालिया तबाहकुन बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से पैदा हो चुकी सूरतहाल का जायजा लिया गया। वाजरे की वाकयात में मुतअद्दिद अफराद जांबाक हुए, जबकि सरकारी निजी इमलाक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। इजलास के दौरान वजीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि मुतासर खानदानों को फौरी इमदाद और बाजाबादकारी के लिए हंगामी बुनियाद पर इकदाम किए जाए। समीन मुसलसल बारिश के बाइस श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुतअद्दिद मकाम पर ताजा लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तूदे गिरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। मुतलका इदारे शाहरा को बहाल करने के लिए मुख्तलिफ मकाम पर जंगी बुनियादों पर काम जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में मुकम्मल तफसील सुनते हैं मोहम्मद तस्कीन से।
2: कौमी शाहरा के उधमपुर, रामबद और बानहाल के सेक्टर में आज सुबह से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से उधमपुर जिला में शाहरा की एक ट्यूब के कई मुकाम पस्सियों और पत्थरों की जद में आ गए हैं। ताहम ट्रैफिक की नकलो हरकत को दूसरी सड़क से जारी रखा गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने आज शाम शहरबीन को बताया कि जिला उधमपुर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से होने वाली बारिशों की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कई मुकाम पर मिट्टी के तोड़े और पहाड़ियों से पत्थरों के गिर आने की वजह से ट्रैफिक को अप ट्यूब के बजाय डाउन ट्यूब से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाहरा की अप ट्यूब पर वाका, शारदा माता मंदिर, थरड, बलीनाला और खैरी के मुकाम पर पस्सियों और पत्थरों के गिरने से मुतासिर हो गए हैं और मोमोल का ट्रैफिक डाउन ट्यूब से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिनाई और जिठनी उधमपुर के दरमियान कल सुबह भी पत्थर और पस्सियों के गिरने से पहाड़ियों के नीचे से गुजरने वाली सड़क मुतासिर रहने के बाद दोबारा बहाल की गई थी, जबकि चांदोज कबुल तवी नदी में आए सैलाबी रेले की वजह से देवल के मुकाम पर हाल ही में मरम्मत करके काबिल ट्रैफिक बनाई गई डाउन ट्यूब को एक बार फिर नुकसान पहुंचा है और यहां पर ट्रैफिक को अपर ट्यूब से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि समरोली के नजदीक शाहरा की निचली ट्यूब के करीब 100 मीटर के हिस्से में भी दरारें पड़ गई है और मजीद बारिशों की सूरत में इस ट्यूब के मुतासिर होने का खदशा है। ट्रैफिक हुकाम ने मजीद बताया कि शाहरा पर गिर आई रुकावटों को हटाने और मामूल के ट्रैफिक को बहाल करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी और अफरादी कुवत बारिशों के बावजूद बहाली के काम पर लगी हुई है और आज शाम तक हजारों की तादाद में मुसाफिर गाड़ियों ने दोनों तरफ के ट्रैफिक में सफर किया, जबकि ट्रकों और खाली टैंकों को वादी कश्मीर से मुकर्रर औकात के अंदर जम्मू की तरफ जाने की इजाजत है और गाड़ियों की आमदरफ्त का यह सिलसिला आज शाम तक जारी था। इस दौरान सब डिवीजन गुरु के मोइला मलिकपुरा में पिछले साल बारिशों की वजह से जमीन खिसकने और 1.5 दर्जन से जायद रिहायशी मकानों में दरारें पड़ने और कई मकानों के तबाह होने के वाकात दौरान हुए थे और गुजश्ता रात से हो रही बारिशों की वजह से मोइला मलिकपुरा की बस्ती में जमीन खिसकने और मकानों में दरारें पड़ने के ताजा वाकात पेश आए हैं और गुरु इंतजामिया ने 1 दर्जन से जायद मुतासर कुंभों को एहतियाती पर डिग्री कॉलेज गोल में मुंतकिल कर दिया है। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि पिछले साल हुकूमत और इंतजामिया ने मुतासर लोगों को दूसरी जगह पर मुंतकिल करने का ऐलान किया था, लेकिन 100 से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इस ऐलान और यकीन दहानी पर

0: कोई अमल बराबर नहीं हुआ है और आज एक बार फिर मुतासर लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घर बार छोड़कर हिजरत करना पड़ रही है।
1: ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। शेरवीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से।
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: शेरवीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समी, जम्मू कश्मीर में खराब मौसमी हालात बरकरार हैं और महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा 48 घंटों के दौरान नई मगरबी हवाएं पुंछ, राजौरी अजला में शदीद बारिशें ला सकती हैं और इस वजह से इंतजामिया हाई अलर्ट पर और लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने को कहा गया है। माहरीन मौसमियात के मुताबिक पुंछ और राजौरी अजला में गुजश्ता 3 रोज के दौरान रोजाना 50 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद जमीन मुकम्मल तौर पर सैलाब हो चुकी है और मजीद बारिश की सूरत में अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तूदे गिरने, पहाड़ी ढलवानों के खिसकने और अवामी ढांचों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ चुका है। इधर कठुआ से हमारे नुमाइंदे रमेश मराठा ने खबर दी है कि कठुआ में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। बिलावर के पंचतीर्थी मकाम प्रावश नाला दोपहर तक 16.5 फुट की इंतबाही सतह अबूर करते हुए 19 फुट तक पहुंच चुका है, जो खतरे की सतह से सिर्फ 1 फुट कम है। शदीद बारिश के बाद शेरपुर के करीब सहारगढ़ परवाका पुरानी सांबा कठवा सड़क भी जेर आब आ चुकी है, जिससे ट्रैफिक की आमदरफ एक बार फिर मुतासिर हुई है। सहारगढ़ और मगरगढ़ समेत मुतद्दिद नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। कठुआ में महज 3.5 घंटों के दौरान तकरीबन 93.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और इस वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हुआ है। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के टंगमर्ग इलाके में भी शदीद बारिश के बाद कई छोटे नाले, नदी नालों में उबाल आया है और इस वजह से करीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। इतलात के मुताबिक मुतद्दिद रहायशी मकान में सैलाबी पानी घुस गया, जबकि जरी और बागाती अराजी को भी नुकसान पहुंचा है। वस्ती कश्मीर के बड़गाम के बला इलाकों में शदीद बारिश के बाद नाले सुखनाग में तुगियानी आई और इस बाइस बीरवा डायवर्जन जरिया आ गया। इंतजामिया ने एहतियाती तौर गाड़ियों की आमदोरफ आज मुअत्तल रखी। इधर गांधरबल जिले में आज वक्फे वक्फे से तेज बारिश हुई। जिला सदर मकाम गांधरबल में चंद एक सड़कें भी जेरियाब आ चुकी हैं, जिससे राहगीरों को चलने में दिक्कतें पेश आई और तेज बारिशों की वजह से आज लोग घरों में ही मैसूर होकर रह गए हैं। साथ ही मेवागात और सब्जियों की क्यारियों के साथ साथ दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। इधर श्रीनगर और इसके मजाफात में भी आज बाद दोपहर से हल्की बारिश हुई, जबकि गुजश्ता 2 दिनों के दौरान इलाकावार तेज बारिश होने के बाद बाबडियम, ईदगाह, जेवीसी, बिमना, लालचौक समेत दीगर कई इलाकों में पानी जमा हुआ है। चंद एक इलाकों में पानी दुकानों में भी दाखिल हुआ। शहरी श्रीनगर में जदीद ड्रेनेज निजाम होने के बावजूद इस तरह की सूरतहाल पैदा होने पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी सवालों के घेरे में आ चुका है। इस दौरान नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज में शामिल होने के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे एहतजाज को मजाक का खेज करार देने की मजमूम कोशिशें जारी हैं। ताहम हम पर उंगली उठाने वालों को यह समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुद्दा किसी एक जमात का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सभी लोगों का है। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया शदीद बारिशों के बाद श्रीनगर में पैदा होने वाली सूरतहाल ने स्मार्ट सिटी मनसूबे की अमलावरी में मौजूद संगीन खामियों को बेनकाब कर दिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शहर में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरतहाल को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया जा सकता है और कहा कि सिविल सेक्रेटेरिएट की ग्राउंड फ्लोर तक जेरियाब आ चुकी है और ये इस बात का वाज़ह सबूत है कि स्मार्ट सिटी मनसूबे के तहत अंजाम दिए गए तरक्याती कामों के मयार और मनसूबा बंदी सवालात के घेरे में है।
4: पिछली कैबिनेट मीटिंग में बिल्कुल इस चीज को देखते हुए कि स्मार्ट सिटी का जो मकसद था और जो उसकी असलियत है, दोनों में फर्क है। कैबिनेट ने उस वक्त ये कहा कि हमें अब स्मार्ट सिटी पे एक थर्ड पार्टी

0: ऑडिट चाहिए उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, लेकिन अभी तक वो स्मार्ट सिटी थर्ड पार्टी ऑडिट का ऑर्डर जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन हम अपने तरफ से जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं श्रीनगर शहर के ड्रेनेज वगैरह को ठीक करने के लिए हम लगा रहे हैं, लेकिन इतना पुराना मसला जो इन लोगों ने ठीक करने की कोशिश भी नहीं की, रातों रात हम कर नहीं पाएंगे। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। आप बाकी जगहों की बात कर रहे हो, हमारे लिए शर्म की बात है ना। सेक्रेटेरिएट का फर्स्ट फ्लोर पानी के अंदर था, ग्राउंड फ्लोर मतलब, सॉरी। तो मैं अब किसको पकड़ूं? आप जिन सड़कों की बात कर रहे थे वहां तो चलिए पानी देखने को मिलता ही है, लेकिन सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड फ्लोर पे एक फुट पानी आना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अब इस पे जरूर हम तमाम हालात का, मौसम ठीक हो जाने दीजिए, हम इसका एक इंक्वायरी करा के देख लेंगे हमें इसमें करेक्टिव एक्शन क्या लेना होगा। जहां तक कॉम्पनसेशन की बात होगी, जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान का असेसमेंट होगा, और फिर जो भी हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के तहत जितनी भी हम रिलीफ दे सकेंगे हम दे देंगे। बात पे कोई दबाव नहीं बनता ना, मरकजी सरकार को चाहिए ही यही, इसलिए अपने लोगों से वो यही बात कहलवा रहे हैं। जिस दिन आप स्टेटहुड और 370 को एक ही प्रोटेस्ट में जोड़ दोगे, 370 ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं, इनको बहाना मिलेगा स्टेटहुड ना देने का। आप और मैं जानते हैं ना, इस मौजूदा बीजेपी हुकूमत से आपको 370 नहीं मिलने वाला। मैंने बार बार कहा हुआ है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने लोगों को धोखा देगा। मैंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा हुआ है कि ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे 370 लिया है वही लोग हमें प्लेट पे 370 वापस देंगे, ये बेवकूफी है। हमें 370 जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस हमें लाना होगा, लेकिन इस हकूमत के तहत हमें मिलेगा नहीं। इस हकूमत से कम हमें बुनियाद तो मिले। अब कोई मुझे कहेगा ना, लद्दाख को ये 371 की बात कर रहे हैं, आप फाइन प्रिंट पढ़िए, लद्दाख को फिलहाल वो क्या दे रहे हैं? जहां उनके दो हिल काउंसिल थे वहां 7 हिल काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं, बस इतना ही। मतलब जहां इनके दो बड़े इदारे थे, बड़े दो मजबूत इदारे थे, एक करगिल में एक लेह में, अब उनको डाइल्यूट करके 7 कर दिए। इसका सीधा सीधा अगर आप जम्मू कश्मीर के साथ उसका कंपैरिजन करना चाहेंगे, मतलब यही होगा कि हमारी असेंबली लेके वो हमें 20 जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड दे देंगे, लेकिन वो हमने पहले भी देखा।
1: वजीर आला उमर अब्दुल्ला की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी, जम्मू कश्मीर में 100 रोज तक जारी रहने वाली नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम आज बाजाबते तौर इख्ताम पजीर हुई। इस सिलसिले में आज SKICC श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शमूलियत की और वहां पर मौजूद समाज के मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदों से खिताब किया। LG मौसुफ ने कहा कि 100 रोजा मुहिम को तमाम 20 अजला में कामयाब बनाने के लिए मजहबी रहनुमाओं, वालिदैन, तलबा, असातिज़ा, बुजुर्ग शहरियों के साथ साथ नौजवानों का भरपूर साथ रहा और इस वजह से ये मुहिम एक मजबूत अवामी तहरीक बन गई। तकरीब के हवाले से इमरान नायको की ये रिपोर्ट।
2: जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अगरचे मुहिम के पहले 100 दिन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुके हैं, तहां मनशियात और नार्को टेररिज्म के मुकम्मल खात्मे तक हुकूमत की कार्रवाइयां मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। तकरीब का आगाज कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सरमद हफीज के इस्तकबालिया खिताब से हुआ, जिन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 100 दिनों के दौरान हुकूमत, पुलिस, सिविल सोसाइटी, मजहबी इदारों, तालीमी इदारों और नौजवानों ने मुश्तरका तौर पर मनशियात के खिलाफ एक मौसर अवामी तहरीक बरपा की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़िश्ता 100 दिनों में उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला का दौरा किया और पैदल मार्च के जरिए आवाम से बराह रास्त मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इन दौरों के दौरान उन्हें ऐसे वालिदैन से मिलने का मौका मिला जो अपने बच्चों को मनशियात की लालच से बचाने के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन साथ ही उन्होंने आवाम में एक नई उम्मीद और आजम भी महसूस किया कि नौजवानों को इस नासूर से नजात दिलाई जा सकती है। मौसूफ एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में शायद पहली मरतबा मनशियात के खिलाफ किसी मुहिम को इस कदर अवामी हिमायत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर यह स्कीम जम्मू कश्मीर डिवीजन के एक एक जिला में नाफिज की जाएगी, जिसके तहत नशे के शिकार अफराद को तिबी इलाज, नफ्सियाती मशावरत, तालीम, हुनरमंदी, रोजगार और तवील मुद्दती बहाली की सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि दोबारा एक बावकार जिंदगी वो गुजार सकें। उन्होंने अवाम, वालिदैन, असातिज़ा, मजहबी रहनुमाओं और समाजी तंजीमों से अपील की कि वो मनशियात फरोशों के खिलाफ आवाज बुलंद करें और नशे के शिकार नौजवानों को मुआशरे से अलग करने के बजाय इनकी बहाली में भरपूर ताउन करें।
3: मेरा मानना है कि ये जो कार्रवाई है ये उन लोगों को एक स्पष्ट चेतावनी है जो ये समझते हैं कि वे कानून से बच निकलेंगे, उनको ये बड़ी चेतावनी है। निजी तौर पर मेरा यह अटूट विश्वास है कि हर पुनर्वास एक जीवन को नई दिशा देता है, हर एक परिवार में खुशियां लौटाता है और भविष्य को नई उम्मीद देता है। इसलिए अभी हमने प्रश्न देखी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव ने दी।

0: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समग्र और समन्वित पुनर्वास ढांचा तैयार किया है। पुनर्वास और सामाजिक आर्थिक पुनः एकीकरण योजना 2026, रिहेबिलिटेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक री इंटीग्रेशन स्कीम फॉर ड्रग अब्यूज विक्टिम्स 2026, इसे शीघ्र लागू किया जाएगा। पायलट बेसिस पर ये काम प्रारंभ होगा और उस आधार पर जो अनुभव आएंगे पूरे जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इसे लागू करने की कोशिश होगी।
1: उन्होंने कहा कि खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है और अगर मुआशरा मुतहिद हो जाए तो नार्को टेररिज्म का खात्मा मुकम्मल मुमकिन है। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुहिम में नुमाया किरदार अदा करने वाली शख्सियात और इदारों को इजाजात से नवाजा। इनमें चीफ सेक्रेटरी अचल जल्लू, इमाम व खतीब आसर शरीफ दरगाह हजरत बल, मौलाना रियाजुल हक नूराबादी समेत मुतद सरकारी

0: दिन के लिए फी कस 6 लाख रुपए एक्सग्रेशिया रिलीफ का ऐलान किया। इस रकम में से 4 लाख रुपए SDRF जबकि 2 लाख रुपए वज़ीर-ए-आला की रिलीफ फंड में से वागुजार किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने काबिनी वज़रा जावेद अहमद राना और सतीश शर्मा को हिदायत दी है कि वो राजौरी और पुंछ अजला में मुतासर इलाकों का दौरा करें। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर कस्बजात में मतला आज अबरालूद रहा और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिशें होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। इन बारिशों से लोगों को गर्मी की शिद्दत से कदर राहत नसीब हुई, ताहम बारिशों की वजह से गली कूचों और सड़कों के जेर आब आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अवामी हलकों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि निकासी आब को यकीनी बनाने के लिए इख्तराई और सूदमंद इकदाम किए जाने चाहिए। उभरती हुई मौसमी सूरत हाल के तनाजुर श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: ऑलरेडी जैसे इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट एडवाइजरी ऑलरेडी इशू किया है टिल 23 फोर जून तक ये एक्टिविटी जो है रहने के चांसेस हैं। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी से लेके वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं, बिल्कुल हैवी इंटेंस शावर शॉर्ट पीरियड में। और उसके साथ साथ यहाँ वैली के अंदर भी तेज बारिशें अभी नॉर्थ पार्ट सेंट्रल पार्ट और साउथ कश्मीर के कुछ जो अपर कैचमेंट है यहाँ पे तेज बारिशें हो रही है। तो ये एक्टिविटी थोड़ा सा रहेगा, इवनिंग से थोड़ा कम होने के चांसेस है और कमिंग डेज में भी खासकर कल भी जो है सिमिलर एक्टिविटी वेदर एक्टिविटी के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पर हैवी शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है, कुछ एक जगहों पर जो है चिमली या हैवी से लेकर वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती है खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। तो इसमें फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड मडस्लाइड शूटिंग स्टोन्स रॉक फॉल ऐसे चांसेस बहुत है क्योंकि मुसलसल पिछले 3-4 दिन से बारिशें वक्त वक्त से हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो 24th ऑनवर्ड मौसम में ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखी जाएगी।
0: मौसम से मुतल्लिक महकमे मौसमियात की पेशगोई के तनाजुर में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आज भी मुअत्तल रखा गया है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि आज भी किसी भी यात्री को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत नहीं दी गई। यात्रा की बहाली का फैसला मौसम में बेहतरी आने के बाद ही लिया जाएगा। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश की पेशगोई की है। इसी दौरान हुकूमत ने नासाजगार मौसमी सूरतहाल के पेश नजर कश्मीर सूबे के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा गैर सरकारी स्कूलों और जम्मू सूबे के विंटर जोन्स में आने वाले तालीमी इदारों में गर्माई तातीलात 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं और ये तालीमी इदारे अब 27 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। रीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि इंतजामिया उभरती हुई मौसमी सूरत हाल के तनाजुर में लोगों की राहत रसाने के लिए तैयार है। कुलगाम में एक तकरीब के हाशिए पर हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम अजला में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं और लोग जरूरत पड़ने पर इनसे राबिता कायम कर सकते हैं।
2: कंट्रोल रूम्स एक्टिव हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी टीम्स को एक्टिव किया है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स एक्टिव किए गए हैं, लोगों तक हेल्पलाइन नंबर्स पहुंचाए जा रहे हैं, वेदर एडवाइजरीज भी सर्कुलेट की जा रही हैं, जैसे आज और कल के लिए साउथ कश्मीर के लिए खास एक वेदर एडवाइजरी जारी की गई है जिसके लिए लोगों को भी इतला किया गया है कि वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की और उसके आसपास नालों किससे थोड़ा सा दूर रहे, उसमें वेंचर आउट ना करें। इसके अलावा जो एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पावर है, हमारे वाटर सप्लाई है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सभी की टीम्स भी हाई अलर्ट मोड पर है। ओवरऑल कोशिश यही है कि जिस तरीके से इवॉल्विंग वेदर सिनेरियो है उसके हिसाब से भी रिस्पॉन्ड करें और जो कंट्रोल रूम्स हैं वो भी कंटिन्यूसली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो ये वेट वेदर स्पेल है उसको हम बेहतर तरीके से निकालें।
0: इससे पहले सूबाई कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के हमरा ककरन कुलगाम में तारीखी माता कटियायानी मंदिर पर हाजिरी दी। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करना चाहिए। दिल्ली से लौटने के बाद आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करने का यकीन दिलाया है और इससे ये वादा जल्द अज जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो स्टेट की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के लिए 50 MBBS सीटों की मंजूरी दी है और अब इस कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी 150 तक पहुंच गई है। ये जानकारी सेहत तो और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला की क्यादत वाली हुकूमत जम्मू कश्मीर में तिब्बी तालीम और सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने की वादाबंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महकमे जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलिन काबरा के वालिद राम प्रसाद काबरा के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए आंजहानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। समिन प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समिन, जनूबी एशिया, मशरक वस्ता और वस्ती एशिया इस वक्त मुसलसल जुग्राफियाई सियासी तब्दीलियों और इलाकाई कशीदगी का सामना कर रहे हैं। सरहदी तनाज़ात, जंगी सूरत हाल, आलमी ताकतों की रकाबत, दहशतगर्दी, तवानाई की सियासत और बदलते हुए इतिहाद ने खित्ते की सफारती माहौल को मजीद पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान अपनी जुग्राफियाई अहमियत के बायस इन तमाम इलाकाई तब्दीलियों से बराह रास्त मुतासर हो रहा है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली मुख्तलिफ इलाकाई दबाव, सलामती के तकाजों, मौशी ज़रूरियात और आलमी ताकतों के मफादात के दरमियान तवाजुन कायम रखने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ताहम इस राह में मुतअद्दिद चैलेंजेस भी नुमाया हैं। इलाकाई तनाज़ात और आलमी ताकतों की कश्मकश के असरात भी पाकिस्तान पर मुसलसल मुरतब हो रहे हैं। जनूबी एशिया में पाक भारत ताल्लुकात बदस्तूर कशीदगी का शिकार है। सरहदी तनाज़ात, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल, सफारती इख्तलाफात और बाहमी एतमाद के फुकदान ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को महदूद कर रखा है। इस कशीदगी के बायस पाकिस्तान में इलाकाई ताउन, तजारत और सफारती रवाबित भी मुतासर हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी पर भी इसके असरात नुमाया हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली पर गहरे असरात डाल रही है। सरहद

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, ब्यूरोक्रेसी किसी भी रियासत के इंतजामी निजाम का बुनियादी स्तून समझी जाती है। हुकूमतें पॉलिसियां बनाती है मगर इन पर अमल दरामद, अवामी खिदमात की फराहमी, तरक्याती मंसूबों की निगरानी और रियासती अमूर को मौसर अंदाज में चलाने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर आयद होती है। अगर इंतजामी निज़ाम मौसर न हो तो बेहतरीन पॉलिसियां भी मतलूबा नतायज नहीं दे पाती। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी और गवर्नेंस के मसाइल गुज़श्ता कई बरसों से कौमी मुबाहिस का अहम मौजू बने हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल जाहिर कर रही है कि इंतजामी कमजोरियां, सुस्त फैसला साजी, सियासी मुदाखलत, वसाइल की कमी और नाकस अमल दरामद ने हुकुमरानी के मजमूई मयार को मुतासर किया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों के लिए मुतअद्दिद पॉलिसियां, इस्लाहाती मंसूबे और तरक्याती प्रोग्राम मुतारिफ कराए जाते हैं लेकिन इनके अमली नतायज अक्सर तवक्कुआत के मुताबिक सामने नहीं आते। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंतजामी निज़ाम मुख्तलिफ रुकावटों का शिकार है जिसके बायस पॉलिसी साजी और अमल दरामद के दरमियान नुमाया खिला पैदा हो जाता है। सुस्त फैसला साजी ब्यूरोक्रेसी के नुमाया मसाइल में शामिल है। मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे मुख्तलिफ इंतजामी मराहिल, मंजूरियों और दफ्तरी कार्रवाइयों में तवील अरसे तक रुके रहते हैं। इस ताखीर के बायस न सिर्फ मंसूबों की लागत बढ़ती है बल्कि अवाम भी इनके फवायद से बर वक्त मुस्तफीद नहीं हो पाते। सियासी अदम इस्तेहकाम भी इंतजामी कारकर्दगी को मुतासर कर रहा है। हुकूमतों की तब्दीली, पॉलिसियों में रद्दबदल और सियासी तरजीहात में मुसलसल तब्दीली के बायस ब्यूरोक्रेसी को बार बार नई हिकमत अमली के मुताबिक काम करना पड़ रहा है जिससे इंतजामी तसलसल मुतासर होता है। सियासी मुदाखलत भी गवर्नेंस के मसाइल को पेचीदा बना रही है। तकरीरों, तबादलों और इंतजामी फैसलों पर सियासी असरात के तासुर ने ब्यूरोक्रेसी की गैर जानबदारी और पेशा वराना कारकर्दगी पर सवालात पैदा किए हैं। पाकिस्तान में इस माहौल में मेरिट और इदाराजाती इस्तेहकाम भी मुतासर हुआ है। इदारों के दरमियान हम आहंगी का फुकदान भी एक अहम मसला है। मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और सरकारी इदारों के दरमियान मौसर राबते की कमी के बायस कई मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। इख्तियारात की गैर वाज़ह तकसीम भी फैसला साजी के अमल को मजीद पेचीदा बना देती है। अवामी खिदमात की फराहमी में मौजूद कमजोरियां भी गवर्नेंस के बहरान को नुमाया करती है। शिनाख्ती दस्तावेजात, जमीन के रिकॉर्ड, बल्दियाती खिदमात, सेहत, तालीम, बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात के हसूल में शहरियों को मुख्तलिफ इंतजामी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मसाइल अवामी एतमाद को भी मुतासर कर रहे हैं। बदउनवानी से मुतल

पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

मीडियम न्यूज 268 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समय रात के 8:45 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर

0: राजनीति मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच UCC विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
5: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने

0: लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी

0: अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगें मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। रात के 9 बजे हैं।
3: जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक बनाने की मुहिम ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया है। समाजी बहबूद के महकमे की जानिब से ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मुहिम के 100 रोज मुकम्मल होने पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि अगरचे इब्तदाई 100 दिनों में नुमाया कामयाबियां हासिल हुई हैं, ताहम मुनशियात और नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी जारी है और इस मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया मुनशियात फरोशियों और नार्को दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी स्मगलिंग के खात्मे, आवामी बेदारी और मुतासिरा अफराद की मुअस्सिर बाजाबाद खारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
4: नशे के कारोबार से जुड़े लोगों, नार्को आतंकियों का बड़ी मात्रा में सफाया हुआ है और आगे भी किया जाएगा। उससे जुड़े नेटवर्क की एक कड़ी को तोड़कर खत्म करने में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी मात्रा में सफलता मिली है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नार्को आतंकवाद की जिस बुनियाद पर स्मगलर्स ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, उसे पूरी तरह ध्वस्त करके ही मुझे लगता है कि इस अभियान की समाप्ति होगी। जिन लोगों ने हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है, उन्हें ऐसा कठोर दंड मिलना ही चाहिए जिसकी मिसाल आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। मैं समझता हूं यही न्याय ऐसा ताजा है और अपराध के विरुद्ध यही सशक्त चेतावनी भी। हम सबका संदेश बड़ा स्पष्ट है उन लोगों को, यदि तुम

तुम दूसरों का जीवन बर्बाद करोगे तो कानून तुम्हारे भविष्य को भी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। नशे के खिलाफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस की जंग के साथ साथ समाज की भी जंग, प्रशासन की जंग के साथ साथ समाज की भी जंग जारी रहनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई केवल सरकार या प्रशासन या पुलिस अकेले नहीं जीत सकती। इसके लिए पूरे समाज को आगे आने की जरूरत होगी और इसमें हर परिवार, हर मोहल्ला, हर पंचायत, हर नागरिक, हर रिलीजियस लीडर, सिविल सोसाइटी के हर मेंबर और विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के कुलपति, कॉलेजेस के प्रिंसिपल, विद्यालयों के प्रिंसिपल और उनके अध्यापक, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से गुजारिश करता हूं कि अपने क्षेत्र में नशे के अड्डों की पहचान यदि आपको है, नशा बेचने वालों की जानकारी अगर आप तक है तो कृपा करके पुलिस तक पहुंचाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि नशे को लेकर समाज में फैली चुप्पी और कलंक ये पूरी तरह समाप्त होगा, तभी जम्मू कश्मीर में समाप्त बनेगा। मेरा दूसरा निवेदन होगा कि जो नौजवान नशे के शिकार हो चुके हैं उनसे मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है, वे हमारे बच्चे हैं, उन्हें अपनाने की जरूरत है, उनका हाथ थामने की जरूरत है, उनका उपचार करने की जरूरत है, उन्हें नई शुरुआत का अवसर मिले इसका प्रबंध करने की आवश्यकता है। हमें आवाम के हर नागरिक के दिल में इस भाव को जरूर पैदा करना होगा कि नशे का शिकार होना ये अपराध नहीं है। नशे की गिरफ्त लाए नौजवान ये परिस्थितियों के शिकार हैं, इसलिए उन्हें दुत्कार नहीं, सहारा और प्यार चाहिए, आवाम का विश्वास चाहिए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, ये केवल एक सपना नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। और अभी कुछ दिनों पूर्व भारत के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने संकल्प के साथ घोषणा की कि आने वाले 3 वर्षों में जिस तरह से देश से नक्सलवाद को समाप्त किया गया, देश से नशा के कारोबार को भी पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास भारत सरकार करेगी। और अधिक तीव्रता के साथ पुनर्वास केंद्र स्थापित हों इसकी कोशिश हो रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भरोसा भी दिया है नए पुनर्वास केंद्रों के स्थापना में आर्थिक मदद देने की। कौशल विकास और रोजगार का काम जिन लोगों के पास है और एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर, इन लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आपकी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। अगर स्कूल में असेंबली होती है नेशनल एंथम के लिए तो मुझे लगता है कि नशे के दुष्प्रभाव के बारे में भी जरूर बताया जाए। ये अभियान स्कूल खुलने के बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इस काम को अपने हाथों में ले। कुछ अच्छे वक्ता हमारे अध्यापक हो सकते हैं, बच्चों में से कोई हो सकता है, प्रतिदिन ये कार्यक्रम एक कैलेंडर के हिसाब से हमें आगे करना होगा। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी अपनी गतिविधियां जो आपने चलाई है आने वाले दिनों में इसे और तेज करना होगा, युवाओं को अवसर मिले खेलकूद का। कल्चर डिपार्टमेंट को भी इस तरह के आयोजन और बढ़ाने होंगे और इसीलिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही नहीं बल्कि होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के द्वारा हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि पुनर्वास के बाद समाज भी नौजवानों को अपनाएगा, आगे बढ़ने में सहयोग देगा। आने वाले दिनों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। शिक्षक, चिकित्सक, धार्मिक नेता, समाज के वरिष्ठ नागरिक और इस अभियान से जुड़े हुए हमारे यूथ क्लब और महिला समितियां, क्योंकि माताओं बहनों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होगा, उनको जोड़ करके इस अभियान का हिस्सा वो सक्रिय रूप से बने, अपने दायित्वों का निर्वहन करें, इस दिशा में हमें और भी प्रयत्न करना है। जम्मू कश्मीर के अपने युवा साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप ही जम्मू कश्मीर के भविष्य, आप ही भारत

कि सबसे बड़ी शक्ति अपने सपनों को नशे की फेंक मत चढ़ने दीजिए, किसी नशे के तस्कर को अपने भविष्य की दिशा तय करने का अधिकार मत दीजिए। आपकी ऊर्जा निर्माण के लिए, आपकी प्रतिभा संयम के लिए, आपका साहस आगे बढ़ने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर, अपनी पहचान पर गर्व करिए और उज्जवल भविष्य की तैयारी में जुटिए। आज मैं सभी पेरेंट्स और युवाओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद बनाए रखिए, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दीजिए, उन्हें ज्यादा समय दीजिए, समझिए और उनका मार्गदर्शन करिए। किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे बच्ची में नशे के कोई संकेत दिखाई देते हैं तो उन्हें कभी नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखिए कि समय पर सहायता लेना और देना ये कमजोरी नहीं बल्कि एक समझदारी है। इतिहास गवाह है कि चाहे आतंकवाद हो या नार्को टेरर हो, आवाम का सबसे ज्यादा नुकसान चुप रहने के कारण हुआ है। इसलिए खामोशी तोड़कर जागरूकता के प्रसार में सबको जुटना होगा ताकि हम जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का जीवन बचा सके। मैं सभी शिक्षकों, रिलीजियस लीडर्स, सामाजिक संगठनों के लीडर से भी कहना चाहता हूं, इन 100 दिनों में आपने जो ऊर्जा दिखाई है उसे आगे भी कायम रखने की आवश्यकता है। आप लोग जीवन की दशा तय करते हैं, इसलिए नौजवानों में अनुशासन, आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। उन्हें नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक बनाने की आवश्यकता है। सभी रिलीजियस लीडर्स से मेरा निवेदन होगा कि अपने प्रभाव का उपयोग समाज में नैतिकता, जिम्मेदारी और करुणा का संदेश फैलाने के लिए करें। इस अवसर पर मैं प्रशासन, कानून व्यवस्था से जुड़े सभी अपने सहयोगी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि 100 दिनों में आपने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। मैं आज इस कार्यक्रम में आपके समर्पण, डेडिकेशन और आपके लगन और त्याग की पूरी पूरी सराहना करता हूं और मैं चाहता हूं कि आगे भी अपनी कार्रवाई में किसी प्रकार की भीड़ मत आने दीजिए। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। नशा तस्कर जितना भी बड़ा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अफरूम के शिकंजे से वो न बचे इसका हर प्रयास करना होगा। हर गिरोह का पूरी तरह से सफाया और जो बात अभी पुलिस के प्रेजेंटेशन में थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस तक जांच करना, एक एक व्यक्ति को कानून के दायरे में लेना, ये काम और प्रभावी ढंग से हमें करना है। हर नशे के अड्डे को समाप्त करना ही है, ये हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं उन सब लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, पुलिस है, नीचे तक के हमारे जो साथी हैं, जिलों में काम करने वाले हमारे सहयोगी हैं, सबने जी जान से इस अभियान में पूरा सहयोग किया है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का विशेष रूप से आभारी हूं और नारी शक्ति का, बहनों का, माताओं का, जिस संख्या में, बच्चियों का, बड़ी संख्या में उन्होंने अभियान में आकर के अभियान को ताकत दी है, मैं उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर के युवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर के एक नया संकल्प लें कि हम इस अभियान को हम रुकने नहीं देंगे, हम इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक नशे का अंतिम हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर से समाप्त नहीं हो जाता। आइए हम मिलकर संकल्प लें, हम इसे भारत के सबसे व्यापक और सबसे प्रभावी जन आंदोलन में बदल के ही दम लेंगे। आइए हम सामूहिक संकल्प लें कि हम हर एक जरूरतमंद तक पहुंचेंगे, उसकी मदद करेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हर उस नौजवान का हाथ हम थामेंगे जो नई शुरुआत करना चाहता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हर उस गिरोह को हम समाप्त करेंगे जो समाज में जहर फैलाने का काम करता है, और हम सब मिलकर के एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएंगे जो नशा मुक्त हो, आतंक मुक्त हो, आशा, विकास

0: और समृद्धि से परिपूर्ण अंत में अपनी बात पूरी करने से पहले मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि 100 दिन केवल शुरुआत है, हमारी यात्रा अभी लंबी है लेकिन लक्ष्य स्पष्ट है। मैंने पहले कहा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के द्वारा हम मिलकर नशे के कारोबार, नशे के तस्करों, नारको आतंकवादी की पूरी व्यवस्था को जल्द से समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नई बेहतर जिंदगी देने में हम सब सफल होंगे। ये किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का एक सामूहिक संकल्प है और मैं मानता हूं यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा भविष्य है। एक गजल के चंद शेरों से अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। है बहुत अधियार अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अधियार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए।
1: इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुहिम में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद और इदारों को एजाजात से नवाजा और महकमे इत्तला तो ताल्लुकात आमा के मुरत्तब करदा एक खसूसी कॉफी टेबल बुक का इजरा भी किया, जिसमें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम की झलकियां पेश की गई हैं। तकरीब में महकमे इत्तला तो ताल्लुकात आमा की तैयार करदा दस्तावेजी फिल्म जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की पेश करदा मुख्तसर ड्रामाई पेशकश, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से खुसूसी प्रेजेंटेशंस भी पेश की गईं। तकरीब में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरक्षा अंद्राबी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान, अवामी नुमाइंदों, समाजी तंजीमों के अराकीन और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए नौजवानों ने शिरकत की। सामीन, ये थी ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मुहिम के 100 रोज मुकम्मल होने पर मुनक्किदा तकरीब की एक खसूसी रेडियो रिपोर्ट। बिरूनी सदाबंदी इमरान अहमद, पेशकश वसीम फारूक।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर है, 9:15 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है। आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपनी पहले की मांग से इन्हराफ करने का इल्जाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अराकीन के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज

0: हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरका जमहूरी इकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इत्तेहाद और बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद जैसी भारत की क़यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया ने शुमाली मकदूनिया के अजीम तरीन हीरो गॉडसे डेलचेव को भी खराज अकीदत पेश किया। शुमाली मकदूनिया का दौरा ख़त्म करने के बाद सदर जमहूरिया रोमानिया का सफ़र करेंगी। मध्य प्रदेश असम्बली ने आज अपने मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान यकसां सिविल कोड मंजूर कर लिया। कांग्रेस सरकार ने बिल को मुंतखबा कमेटी को भेजे जाने की मांग की, लेकिन रियासती सरकार ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के अराकीन असम्बली ने ऐवान के वस्त में एहतजाज किया, जिसके बाद कार्रवाई दो मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई में रुकावट के बावजूद बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यकसां सिविल कोड UCC के अहम इल्तजाम के तहत मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी। मर्द और खवातीन को मसावी मौरूसी हकूक हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं गांव की सतह पर भी शादियों का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। कबायली बिरादरियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तामांग गोले ने ऐलान किया है कि नामची जिले में समरदुंग में NHPC हादसे के सिलसिले में एक आला सतही तहकीकती कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के साथ आज हादसे के मकाम का दौरा करने के बाद वजीर आला ने सभी फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह हादसा चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से नहीं बल्कि मीथेन गैस के धमाके की वजह से हुआ हो। अब तक जाए हादसे से 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ऐसा समझा जाता है कि दीगर अफराद अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नामची जिले के समरदुंग में NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जेरे तामीर सुरंग में फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी और DGP ने तलाश कार्रवाई के सिलसिले में सीनियर अहदेदारों के साथ नामची में एक जायजा मीटिंग की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला से बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जनाब प्रेम सिंह तमांग ने सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के लिए वजीर आजम की सताइश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज टनल का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की के मुनासिब जाँच इस अफसोसनाक वाकये के सभी हकाइक को वाजह करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम हुकूमत मरने वालों के कुंबों को फौरी मदद फराहम करेगी। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने भी नामची में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा मीटिंग की ताकि बचाव मिशन को तेज किया जा सके। इस दौरान NDRF की एक और टीम नए आलात के साथ आज टनल में दाखिल हो गई। गैंगटॉक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
1: ईरान और अमेरिका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुर्मुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ आज मुलाकातें की, जहां सिफारतकार अमेरिका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर हुर्मुज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून, कुवैत और बहरीन से ताज़ा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमेरिका ईरान तनाज़े पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदेही करते हैं। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर व्लादिमिर लादानोव को तलब किया। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज़ MV गोल्डन लिव पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें ज़ाय हो गई थीं। वजारत दाखिला ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा कि इस तरह के हमलों से बैन अल-अक़वामी बहरी तजारत की हिफाजत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के परुन शहर में तबाहकुन सैलाब में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए और दीगर 80

ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान हुकाम की जानिब से एक बयान के मुताबिक परून और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब के पानी में बहने से 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी ने कहा कि नुकसान का जायजा लेने, लापता अफराद को तलाश करने और बचाव इकदामात में मदद की खातिर खसूसी बचाव टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम ने ये खबरदार किया कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरकी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले दो दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले तीन दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटें पड़ सकते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी

0: भारतीय महकमे मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले एफआईएच आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। दरमियानी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने नए तजुर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहिरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पूल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पूल स्टेज के मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ 11-2, 11-1, 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। मर्दों के जुमरे में आर्यवीर दीवान, यूशा नफीस और गुरवीर सिंह ने पहला राउंड जीत लिया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया है। आमना हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदे महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय रात के 9:30 हुए हैं।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: आकाशवाणी श्रीनगर समीन पेश खिदमत प्रोग्राम बज़्म-ए-शआर।
4: बज़्म-ए-शआर
5: बज़्म-ए-शआर प्रोग्राम ताज़ा शुमार हिंदिस खदमत मज हाजिर अजकिस मुशायरस मजम शायर हजरात पन सरताज़ कलाम परन तिंद नाव मुनीब नारवावी सब जन आडूरा नारवा पे आम वसीम अली काजिम सब कांटर बुक मागम पे आम बशर जोगियारी सब जोगियार शीरी बारामूला पे आम मीर हसरत हमीद सब बागेंदर पापोर पे आम मीर अफरोज सब जन टंगमर्गी पे आम ब सागर नजीर चुकर पटने पे मुशर बाबत पे शुरू कर ब्रो पाओ तेह चतस जजकिस ये मुशरस मीर अफरोज अफरोज सब सदारत कर आगाजस मज दिम दावत मुनीब नारवावी सबस जम वन अशाम पुन सरताज कलाम
6: पेश खदमत गजल मतला इथ कोस पोहक पठन ऐ प्यारान दार दास पे बोस पोहक पठन ऐ प्यारान दार दास पे तो पाई पन सारा तो गारान दार दास वरुन वथरुन करत खाकुक शोंगत छुक पान आरामस वरुन वथरुन करत खाकुक शोंगत छुक पान आरामस बचश्मो रात

0: जी दोस्तों, फोन इन प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश के साथ आपकी मेजबान सकीना हाजिर है। उम्मीद हम ये करते हैं कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज भी शो की पहली कॉल लेने से पहले एक बेहतरीन बात आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सच तो ये है कि इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून की वजह बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। बस यही जिंदगी है। सो दोस्तों, खुश रहें और खुशियां बांटें। इसी बात के साथ हम लेते हैं आज के शो की पहली फोन कॉल। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: ये मैं त्राल पंजर से लाल हसन बोल रहा हूँ।
0: हमारे मुस्तकिल सुनने वाले।
1: बहुत देर से फोन किया ना।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है, ब्रेक ली आपने, बाकी दोस्तों को मौका मिला।
1: आज है ना वो मोहम्मद रफी की आवाज में चल उड़ गया पंछी।
0: चल उड़ जा रहे पंछी।
1: जी जी जी।
0: अब ये देश हुआ बेगाना।
1: जी सर जी, वही
0: आपके लिए हम पेश करेंगे। और कोई है आपके साथ?
1: मेरे साथ है मेरे भाई जलालुद्दीन गोजर, और मेरे साथ रियाज अहमद गोजर, और निजीर अहमद गोजर, और समीर अहमद गोजर।
0: आप अपनी पसंद का गीत सुन लीजिए।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: मैं नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
1: मानेगा बालाघाट मध्य प्रदेश से बसंती बघेल बोल रही हूँ।
0: जी बसंती जी, आपकी आवाज हमने पहचानी। आपकी आवाज बिल्कुल डिफरेंट है लिसनर्स में से।
1: हमेशा क्या आज खुश रहती हूँ ना, हमेशा।
0: जी आपकी आवाज में एक अलग ही एक एहसास है और खुशी इसमें छलकती है।
1: जी जी जी जी जी जी।
0: चलिए अल्लाह आपको खुशी रखे।
1: कहने लगी मैम, मेरी बेटी भी मम्मा पापा कहने लगी।
0: अरे क्या बात है, गिलकारियां शुरू हो गई है, आपकी बिटिया बतियाने लगी है।
1: हाँ, मेरी बेटी का नाम है भावना साहू।
0: भावना के बारे में पहले से ही हमने सुना है, जब ये पैदा हो गई उसके बाद भी आपने कॉल किया तो आपने अपडेट दे दिया, तो आज ये अपडेट मिला कि भावना बात करने लगी है।
1: हाँ, मम्मा पापा कहने लगी। उदम भी बात करती, आज किचन खुल जाके सेक्टर में फेंक दी, जब आने में किचन तोड़ दिया।
0: देखिए बचपन ऐसा ही होता है बसंती जी।

0: आप पता है मैं नाम से बात कर रही हूँ ना
1: जी,
0: कैसे हंस रही है? हंस रही है,
1: माँ पे गई है।
0: मुझे अच्छा लगेगा और सारे श्रोता साथियों को भी आप देखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अल्लाह इसको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ रखे।
0: गीत है मैम
1: जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगी?
0: गीत मेरे बेटी के लिए बहुत सुंदर गीत है
1: जी,
0: राजा फिल्म का है, फूल मांगू ना बाहर मांगू,
1: मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू।
0: हाँ,
1: पेश करेंगे आपके लिए।
0: तो ये मेरे बेटी के लिए, बेटी के पापा के लिए, बेटी की मम्मी के लिए और बेटी के जो बुआ बात कर रही उसके लिए है और मेरे भैया हैं उनके लिए है और जितने सारे सुनने वाले सारे दोस्त के लिए है।
1: चलिए सभी बसंती जी मिलजुल कर आपकी पसंद का गीत सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, क्योंकि बातों को देते विराम आप अपनी बिटिया को अब संभालिए।
0: बिल्कुल, धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका बसंती जी।

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर। प्रोग्राम जारी है। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, आपकी फरमाइश।
2: दोस्त होते नहीं पर दोस्त नजर आते हैं, कैसे कैसे यहाँ लोगों को हुनर आते हैं। बस यही सोच के हम चलते रहे सोए अदम, एक मुसाफिर को तो दर पे सफर आते हैं। अब है पंछी को मयसर नया हर रोज उफक, अब कहाँ लौट के वो शाम को घर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: दीदी आप ठीक हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: साहिल बात कर रहा हूँ, कासाइर शरीफ जनाब साहब सोरा से।
1: जी साहिल दार।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, बताइए क्या हाल चाल है।
2: बस अल्लाह का करम और आप बहन की दुआ से मैं ठीक हूँ, और यही दुआ है कि आप सही सलामत रहो, खुश रहो, अपने अहल आयाल के साथ मस्त रहो।
1: आमीन सुम आमीन।
2: ऐसे ही सजा के हमारे प्रोग्राम पेश करते रहो, क्योंकि आप जब प्रोग्राम में, हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब प्रोग्राम के आगाज में एक मुस्बत बात हमसे शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है उन मुस्बत बातों से।
1: देखिए, कोशिश हमारी यही रहती है कि अगर कोई अच्छी बात, चाहे हम हैं चाहे कोई और हो, किसी एक की जो राह है, जिंदगी है, वो अच्छी राह पे गामजन हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं होगी।
2: जी बिल्कुल
1: जी, बताइए आज क्या सुनेंगे।
2: फिल्म का नाम मालूम नहीं लेकिन उम्मीद है कि आपको जरूर पता होगा इस फिल्म का नाम।
1: जी,
2: गाने के बोल है, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी बरा नहीं।
1: देखिए, अभी ना जाओ छोड़कर, ये तो जहन में आ रहा है कि आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, और ये देव आनंद और साधना जी पर गीत पिक्चराइज किया गया था हम दोनों फिल्म से।
2: वाह क्या बात है।
1: जी
2: तो फिल्म का नाम मालूम है तो आपने तो पूरी डिटेल ही बता डाली, शुक्रिया शुक्रिया।
1: देखिए हमारा काम है, अब इतने साल हो गए आपसे बात करते हुए, ये रेडियो शोज पेश करते हुए, देखिए वो इंसान ही क्या जो काम कर कर के, पढ़ पढ़ के पिछला भुला दे और आगे बढ़ जाए।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी जो यादाश्त है वो इससे भी ज्यादा तेज हो।
1: शुक्रिया नवाजिश आपकी। बताइए अपने दोस्तों के नाम।
2: जी सबसे पहले मेरे भाई दो मुश्ताक और इम्तियाज, और एजाज अहमद हमदानी, और मीरपुरा से बशीर अहमद कुंदू, उजैर बशीर, नासिर बशीर और जहर बशीर।
1: अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी पसंद का गीत सुन लीजिए।
2: शुक्रिया दीदी।
3: अभी न जाओ छोड़ कर

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: गजराज मोदी बात कर रहा हूँ, रेलई राजगढ़ बिहार और मध्य प्रदेश से।
0: गजराज जी, एक बार फिर शो में आपका वेलकम करते हैं।
1: जी।
0: ब्रेक के बाद आपने कॉल किया।
1: हाँ, बहुत समय के बाद। जी, आपका शो बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों की फरमाइशें आती है और आपका जो बोलने का तजुर्बा है बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत बात आए।
0: देखिए, ये जो शोज हम पेश करते हैं आप ही जैसे दोस्तों के लिए पेश करते हैं। बाकी रही पसंद ना पसंद, सभी प्रेजेंटर्स की कोशिश होती है कि वो अच्छे से आपके लिए प्रोग्राम पेश करें। आपको पसंद आते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी। मैं दीदी खेती का काम करता हूँ और जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग करता हूँ। गाने के बोले ये बात, ये कश्मीर जन्नत का है नजारा, ये फिल्म को नाम तो दीदी मुझे मालूम नहीं है मगर गाने के बोले एकदम से याद आ गए हमको।
0: ये आबरू फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: जी।
0: आपके लिए हम पेश करेंगे, आप तक कुछ ही देर के बाद ये गीत हम पहुंचाएंगे। अपने दोस्तों के नाम बताना चाहेंगे गजराज जी?
1: हाँ जी, बताना चाहेंगे। हमारे साहिलदार जी हैं श्रीनगर से और ये गीत दीदी आपके लिए भी
0: सुनेंगे जरूर।
1: हमारे भगवान सिंह जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, सभी के लिए सुनवाना चाहूंगा और नई मलिक जी के लिए और हमारे एक भैया और हैं, उनका नाम मुझे आ नहीं रहा है।
0: गजराज जी कुछ देर के लिए रुकिए, याद कर सकते हैं? किसी को नाराज नहीं करना चाहते।
1: लतीफ अहमद रैना जी,
0: चलिए आपको याद आ गया।
1: उनको सुनवाना चाहता हूँ और हमारे पंचाराम सरनाथ पुष्करनाथ जी, इन सभी को गाना ये डेडिकेट करता हूँ। केसी सिंह राजपूत जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं और ठीक है दीदी, नमस्ते।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जी, जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और शो एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, आपकी फरमाइश। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी ठीक छु?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बस बिहू हर दुपोज पे फारूक अहमद चौपाँच सारस कर।
0: फारूक सब ठीक ठाक छु?
1: अना शुक्र खुदा मुद कर अल्लाह तला दिन इजत।
0: वन तो फारूक सब आज क्या छु बोजुन?
1: बोजुन रिकॉर्ड रिकॉर्ड बोल अस जान सजनाम तुझको बुला दिया फिल्म नाव राजा।
0: बिल्कुल
1: साथी कह गए बूझो आगाज मैं एजाज अहमद चौपान बे पुलवान पे अफरोजा जी बे खाई पे बिलाल अहमद बे जनाब साहब ने सौर पे साहिल अहमद डार।
0: शुक्रिया फारूक साहब कॉल कर बाप तु बूझो पे पसंद यह अलक याकनिक तो उदित नारायण गवान।
1: शुक्रिया तुम्हें खादर तह दी अस मौक अस तरह खुशी सपदे अल्लाह तला दिन इजत
0: आमीन सुम आमीन। फारूक साहब वो यह प्रोग्राम बोजन वाल मगर अक गुजारिश गाबे गाह कान कि दो रत तो कॉल कर बाकी खुशी सपदान ये कह लिसनर कॉल कर तुंद सी प्रोग्राम बनान तम सठा खुशी सपदान ये कह लिसनर पत ब्रेक नि वापस कॉल कर बिल्कुल प्रत इंसान कामयाबी मिल खुशी मिल सुकून मिल
1: खुशी
0: आज सालम इंसान मायसर ब्रोह खान खुशी आज तेल उदास दवान
1: तमाम तुहसर अल्लाह तला कर प्रीन इजत
0: आमीन सुम आमीन। बेहतर रबस सवाल तो बूझ तो पे पसंद।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: राइद इकबाल बोलूं, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील थुरू दे ग्राम आरो कोट लेंचा है।
0: पहली बार आपने कॉल किया है मुझे लगता है।
1: जी जी, पहली बार किया, बड़े वक्त से ट्राई कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम, बार फोन नहीं लगता था, बिजी बिजी आता था।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत न हारने के लिए, आपने ट्राई किया, आज आपका नंबर लगा, हमें बहुत खुशी हुई, आपका वेलकम है शो में।
1: हम तो मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं, कोई भी गीत आप सुना दो मोहम्मद रफी की आवाज़ में।
0: जाहिद भाई, ये आपकी पसंद का प्रोग्राम है, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कोई गीत याद कीजिए।
1: आप ही अपने पसंद के कोई नगमा लगा दो तो वही हम सुन लेंगे।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत आपके लिए पेश करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे 2 महीने के बाद जब फिर से आप ट्राई करेंगे, अपनी पसंद का गीत आप याद रखेंगे, जिससे ये होगा कि हमें खुशी होगी, बाकी दोस्तों को खुशी होगी आपकी पसंद सुन के। ठीक है
1: जी, मोहम्मद रफी की आवाज में हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं,
0: पेश करेंगे आपके लिए, कोई बात नहीं।
1: तो संगी साथी है हमारे, तो उनका नाम भी हम ले ले।
0: जरूर ले लीजिए।
1: मेरा वालिद है मोहम्मद शफी, वालदा शमशाद बेगम, भाई मेरा छोटा मोहम्मद दानिश, बहन जायदा बानू नायदा कोसर, अंकल का लड़का है खालिद हुसैन तालिब हुसैन, और बाकी सब कश्मीर के संगी साथी जो सुनने वाले हैं वो भी हमारी फरमाइश सुनेंगे।
0: जरूर इंशाल्लाह। शुक्रिया जायद इकबाल साहब कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया। वालेकुम सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश। वालेकुम सलाम।
1: कैसी है मैम आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। नाम बताएंगे अपना?
1: मैं मोहम्मद फरमान बात कर रही हूँ, जिला मुरादाबाद, ग्राम उत्तर प्रदेश।
0: मोहम्मद फरमान साहब हमारे मुस्तकिल सुनने वाले हैं, लेकिन आज आपने महीनों के बाद कॉल किया।
1: जी मैम, बस आपसे मेरी बात हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है और सभी तोता है, तो मैंने बारी बारी से नंबर ट्राई करने के लिए गया, दूसरे तोता भी फोन प्रोग्राम में हिस्सा दे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस सोच के लिए, आज आपका नंबर लगा, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ वापस इस शो में जुड़ गए।
1: जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप
0: बताइए आज क्या सुनेंगे फरमान साहब?
1: हाँ, मैंने भी प्यार किया
0: जी,
1: और जीत के बोले मुबारक हो तुमको,
0: ये शादी तुम्हारी,
1: आपकी इजाजत हो तो कुछ दोस्तों को याद करना चाहता हूँ मैं।
0: क्यों नहीं, बताइए।
1: सबसे पहले आप सुनेंगे हमारे साथ
0: जी,
1: और साहिल दार भाई सुनेंगे हमारे साथ, और मुकेश कश्यप भाई सुनेंगे हमारे साथ, मोहम्मद वकार परी जी सुनेंगे हमारे साथ, और नई मल्लिक है हमारे भाई, और हमारे प्यारी की बहन है नरगिस खातून, और अनवर बिहारी साहब है, तमाम तोता सुनेंगे मैम जो इस समय रेडियो से सुन रहे हैं।
0: आपकी पसंद का नगमा पेश करते हैं उदित नारायण की आवाज में, सभी मिलजुल कर सुनते हैं।
1: मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम।

0: سمعنا آپ نے فلم معصوم سے نغمہ سنا. یہ آکاشوانی سری نگر ہے, شب کے 11 بجنے والے ہیں. اب آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے.
1: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں پرشانت کمار. سرکار سنسد میں نیٹ اور اس سے جڑے مدوں پر چرچا کرنے کے لیے تیار ہے. نئی دلی میں کیندریہ منتری جیتیندر سنگھ نے آروپ لگایا کہ لوک سبھا میں وپکش کے نیتا راہل گاندھی سرکار کے آشواسن کے باوجود نیٹ مدے پر چرچا کی اپنی پرانی مانگ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. آج کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑگے, پارٹی نیتا راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے انیہ سدسیوں کے ساتھ مل کر نیٹ مدے پر چرچا کی مانگ کو لے کر لوک کلیان مارگ پر विरोध प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है. नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है. इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं. इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई. दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए. विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे. हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका. लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा. राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा. राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा. सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है. आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी. मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया. मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की. प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए. इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है. युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है.

शब के 11:10 हुए हैं। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय हमारी आज की नशरियात ही पर बर्खास्त होती है। आपसे इजाज़त लेने से पहले एक नज़र कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश खदमत होगा सईन फनकार। कल के हमारे फनकार हैं गुलकारा जमीला खान, मेज़बान हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर गुलाम रसूल आखून। शब 10 उर्दू गज़लों से आरास्ता फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो महफिल गज़ल पेश होगा। प्रोग्राम पेश करेंगी फरजाना। हमारी नशियात का आगाज़ सुबह 6:30 पर होगा। प्रोग्राम सुबह का ही पेश खदमत होगा 6:35 पर। मॉर्निंग लाइव शो प्याम सुबह समाप्त करें सुबह 7:10 पर। कश्मीरी मौसीकी पेश होगी सुबह 8:15 पर। इसमें आप कलाम अहद जरगर और कलाम कुसुम धर सुनेंगे दीपाली वातल की आवाज़ में। मौसीकार हैं गुलाम रसूल आखून। स्पॉन्सर प्रोग्राम जू और जहां और नशर होगा सुबह 8:45 पर। मुकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी सुबह के 9:00। सूफी बुजुर्गों की जिंदगी उनकी तालीमात और कलाम से मुतलिक सिलसिलेवार प्रोग्राम सूफी सदा पेश खिदमत होगा सुबह के 10:00। कल का प्रोग्राम वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग गुलाम रसूल हजीन से मुतलिक है। तहरीर आवाज गुलाम रसूल आखून की है। मॉर्निंग लाइव शो में सुबह 10:30 पर हमारे मेहमान होंगे प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन इश्तियाक अहमद खान। इनसे हम कलाम होंगे हमारे साथी इशफाक हाफिजी। गुलाम मोहम्मद गनाई और सरनल और साथियों की आवाज़ों में आप छकरी रूह समाप्त करेंगे सुबह 11:30 पर। दिन में 2:30 पर और सपहर 4:30 पर। इनसे अब बिल तरतीब कलाम लस्कान फिदा, कलाम समद मीर और कलाम न्याम सब सुनेंगे। बजमन इस वारास्त होगी दोपहर 12:40 पर। एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर प्रोग्राम नश होगा दिन में 1:10 पर। सपहर 3:00 प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम 4:00 नश होगा। गोजरी प्रोग्राम शाम के 5:00 पेश होगा। शाम 6:10 पर देहाती भाइयों के प्रोग्राम में मामूल की नशियात के अलावा बच्चों की हफ्तवार महफिल होगी फलविन टूर। शहरबीन आप समाप्त करते हैं शाम के 7:00। प्रोग्राम वादी की आवाज़ रात के 8:00 नशर होगा और रात 8:30 पर जिला नामा पेश होगा। समय नहीं है कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्राम। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। शब के 11:12:55 हुए हैं। अब हमारी आज की नशरियात यहीं पर बर्खास्त होती है सुबह 6:30 पर। कल की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत पर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शब बखैर। जय हिंद।

0: सेक्टर अभी भी मिलकर वो इस पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
1: देखिए, क्यों का जवाब तो अमित जी थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता
0: जी,
1: है
0: जी, जी.
1: क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं. हालांकि आपने मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई जरूर है, अब थोड़ा सा जरूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना जरूरी रहेगा. और मानसून हमारे देश में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा. और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे, उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नजर पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है, उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाजार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाजार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहां मिलेगा.
0: चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र जो आमतौर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाजार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नजर आएंगे. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर. एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा. ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोफिट सूचकांक 0.8%, और सिंगापुर स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए. हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई. विशाल, अगर पूरे तौर पे देखें एशिया और अमेरिका और अपने घरेलू बाजार को, शेयर बाजार की अगर हम बात करें, हमारे बाजार में कहीं ना कहीं मोटे तौर पे, चाहे अंकों के तौर पे, आंकड़ों के तौर पे गिरावट नजर आई एशियाई बाजारों में, लेकिन वहीं वो एक ठीक ठाक मजबूती नजर आ रही है. क्या जो मिडिल ईस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्थाएं मान चुकी हैं कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया, और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर हैं, या अभी भी बाजार इसके प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है?
1: देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा. अगर आपको 2-4-5 दिन या हफ्ता, एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सब मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है. एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे. ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं, और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना, और ख़ास तौर पे ऐसी स्थिति पे पहुंच जाना जहां पे कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो, यहां केवल ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहां पे सप्लाई चेन की भी बात है, इसका सीधा असर सप्लाई चेन पे दिख रहा है. तो वो जो सप्लाई चेन है उसका असर हर इकोनॉमी को, दुनिया की हर जो अर्थव्यवस्था है उसको, हर देश जो है, हर बाजार जो है उसको झेलना पड़ेगा. हाँ, यहां मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ जिन्हें कहा जाए कि समझदार देश या समझदार अर्थव्यवस्था, जिनमें से हम भारत को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने रास्ते ज़रूर ढूंढे हैं और एक तरीका ज़रूर ढूंढा है कि हम किस तरह से माफ़ कीजिएगा, किस तरह से शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस तरह की जो मुसीबत है उससे निपट सकते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी निकाला जा सके उतना बेहतर है.
2: All right, moving on to the next big story of the day. US President Donald Trump has announced a 50% tariff on a range of Canadian imports, accusing the country of continuing to discriminate against American products. The White House said the new duties will take effect in 30 days. US President Trump's latest move has led to fears of a deepening trade war between the two close allies, as the relationship between Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney continues to deteriorate. Vishal, what could be the impact of such an announcement on stock markets worldwide?
1: Well, the tariff war unleashed by President Trump has had a lot of impact on markets across the world, economies across the world as well. And, these are fresh salvos in that conflict, the trade tariff conflict. But looks like, Canada has also made it very clear earlier that they're not going to bow down.

0: Indian bullion market, 24 karat gold, was trading 0.9% up at 1,43,280 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% up at 2,23,620 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.9% की बढ़त से 1,42,608 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 2.1% की मजबूती से 2,23,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. विशाल, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, जो कि शायद बहुत हॉट टॉपिक है, वापस से वही $90 के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. ये अभी आपके हिसाब से, ठीक है, स्पेकुलेशन की बात नहीं है, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे आप कहाँ देखते हैं ये कितना अभी हमारे दर्द का कारण बन सकता है? दूसरा, इसी के साथ साथ आम तौर पर ऐसे देखा था, डॉलर मजबूत होता है सोना गिरता है. उधर डॉलर भी मजबूत है लेकिन सोने ने भी धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ानी शुरू करी है. पहले तेल फिर सोना.
2: जी बिल्कुल. तो पहले तेल की बात करते हैं. तेल पे नजर रखनी बहुत जरूरी है और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स चल रही हैं मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और अमेरिका के बीच, मुझे लगता है कि ये जो चाल अब क्रूड ऑयल के ऊपर की तरफ चली है वो थोड़े दिनों तक बरकरार रह सकती है और वो दर्द का कारण जरूर बन सकता है.
1: $100 के ऊपर तो नहीं जाएगा.
2: मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीद तो हम सब करेंगे कि 95 से भी ऊपर ना जाए. और रही बात सोने की, तो आपने सही कहा, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त वो जो दोनों हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स पे दोनों चीजें काम कर रही हैं, डॉलर और सोना. लेकिन सोने को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सोने में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है और उस पे जरूर.
1: लगभग सभी धातुएं जो है काफी मजबूत स्थिति में हैं. ये कुछ चीजें क्या ये स्वाभाविक है या कुछ और भी वजह आपको नजर आती है?
2: अभी हमारे पास समय कम है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत वृद्ध टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है. लेकिन हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त सभी धातुएं एक मजबूत स्थिति पे खड़ी है और उनका रिएक्शन अब मजबूती के ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा.
1: चलिए विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मन में आपके लिए, स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत लिया है हमने फिल्म साजन से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपके लिए।
1: शम की डोरी

फिल्म भीगी पलकें का ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। इससे पहले आपने गीत सुना फिल्म श्री 420 का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के फंगूर चैनल 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट फेज शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की एक पहल है। वेब्स ओटीटी के अंतर्गत माई वेब्स प्लेटफॉर्म पर आधारित इस चैलेंज में लोगों को अपने जिलों की अनोखी कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले छोटे वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी 1 से 31 अगस्त के बीच वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर माई वेब सेक्शन पर 1 से 3 मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इसे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में WTO के सदस्य देशों ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, सीमा शुल्क प्रणाली

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर बात मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास वही होता है जब जहां किसी की एक झलक दिल की धड़कनों को बदल कर रखते और फिर हर बार उसी की आहट, उसी का ख्याल हमारे इर्द गिर्द ठहर जाए और दिल बस एक ही ख्वाहिश करे कि काश वो सामने हो और ये वक्त यहीं थम जाए। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, जो इधर दिल में है या रब वो उधर पैदा कर। काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा है किसी ने कि वो थका हुआ मेरी बाहों में जरा सो गया था। तो क्या हुआ? वो थका हुआ मेरी बाहों में जरा सो गया था तो क्या हुआ? मैंने चांद देखा है किसी शाखे गुल पे झुका हुआ। जी हाँ, सच्चा प्यार वक्त का मोहताज नहीं होता। बदलते मौसम, बदलते दौर और बदलती राहों के बीच भी दिलों का रिश्ता अपनी खूबसूरती बनाए रखता है। मोहब्बत की यही तो सादगी है और यही गहराई जो हर दौर में नई लगती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

ऋषिगंधा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए कि उसकी मौजूदगी ही हर खुशी की वजह बन जाए और जिंदगी का हर रास्ता उसी से होकर गुजरता हुआ महसूस हो, जी हाँ यही तो है प्यार। ये प्यार का वही खूबसूरत एहसास है जो रिश्तों को अनमोल बना देता है। बहुत खूब कहा किसी ने कि ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, अजनबी जैसे अजनबी तुम हो, अब कोई आरजू नहीं बाकी, जुस्तजू मेरी आखिरी तुम हो।

कभी कभी प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें ही दिल की हर बात कह जाती हैं और एक मुस्कान अनकहे जज्बात को बहुत ही खूबसूरती से बयां कर देती है। आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल लगी से आप, वाकिफ नहीं अभी मेरे दिल की लगी से आप।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ। आप सुन रहे हैं निशिगंधा। जिंदगी हर किसी को हर दिन कोई ना कोई खूबसूरत तोहफा नहीं देती, लेकिन कभी कभी कुछ किस्मत वालों को कुछ ऐसे लम्हे मिल जाते हैं जो बरसों के इंतजार के बाद मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। जब प्यार सच्चा हो तो उसकी मुलाकात, एक मुलाकात भी पूरी जिंदगी को सवार देती है, खूबसूरत बना देती है।

देखिए चलते चलते हम अपने अंजाम की तरफ ही आ चुके हैं और चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाएंगे आपको, एक और खूबसूरत सा गीत। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, गजल के रेशमी धागों में यूं मोती पिरोते हैं, कहीं पानी कहीं शबनम कहीं आंसू भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं।

और इस गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुप्पुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में

अरेवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। गीत सुहाने लेकर मैं सुरभि आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और खूबसूरत लम्हों का भी साथी है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते बल्कि हर बार सुनने पर दिल को एक नई ताजगी दे जाते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे ही सुरीले और सदाबहार गीत के साथ।

आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबान नहीं रखते। सर रखते हैं सर में नहीं सौदाए मोहब्बत, दिल रखते हैं दिल में कोई अरमान नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबान नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा, शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, खाक में मिलकर तो हासिल मुअद्दा हो जाएगा, तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए गीत सुहाने में अब आपको सुनवाते हैं नीला आकाश फिल्म का ये गीत रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है। ये बात की सूरत के भले दिल के बुरे हों, अल्लाह करे झूठ हो बहुतों से सुनी है। गजलों ने वहीं जुल्फ के फैला दिए साए, जिन राहों पे देखा है बहुत धूप कड़ी है। आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है।
1: यूं ही तुम

भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। आशिकी में बहुत जरूरी है बेवफाई कभी कभी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री

0: उपेंद्र सिंह ने आरोप लगाए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ की बुआई की प्रगति, मानसून की स्थिति, उर्वरक और बीज की उपलब्धता तथा अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों की निगरानी करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयंबटूर में जीके एनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुपुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has said it is ready to on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi.

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भटक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि वो गजल बालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं समझता था मोहब्बत की ज़बां खुशबू है, फूल से लोग इसे खूब समझते होंगे। भूल कर अपना ज़माना ये ज़माने वाले, आज के प्यार को मायूब समझते होंगे, वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

प्यार भरी नजर का जादू कुछ ऐसा होता है कि दिल अपनी धड़कनों का हिसाब ही भूल जाता है। एक मुस्कान मासूम सी, एक चुपके से उठी नजर और अनकहे एहसास, यही तो मोहब्बत की है सबसे हसीन जबान। और इसी दिलकश अदा और प्यार की मीठी कशिश से सजा है अगला गीत।

धीरे धीरे वक्त हमें अंजाम की तरफ ले आया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जी हाँ, जब मोहब्बत दिल में उतरती है तो हर गली रोशन लगने लगती है और हर शाम चांदनी से भर जाती है। किसी अपने की एक झलक, उसकी एक मुस्कान और एक मुलाकात का इंतजार, यही प्यार की सबसे खूबसूरत धड़कन है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिससे हमने दिन रात दुआओं में। तुम छत पे नहीं आए वो घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत लटका सावन की घटाओं में। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, फूलों की बदन वाली खुशबू सी अदाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में।

इसी गीत के साथ राज सुरमई का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब सुरभि को दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक

0: प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयंबटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to the media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 18 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्यार का रास्ता कभी सीधा साधा तो रहा ही नहीं, इसमें थोड़ी शरारत होती है, थोड़ा अलबेलापन और थोड़ा सा सुरूर। जब दो दिल इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो राह का हर मोड़ हसीन लगने लगता है। मोहब्बत का ये सफर जितना अनूठा है उतना ही अलबेला भी है। आइए ले चलते हैं आपको बीते हुए सुनहरे दौर में।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म धरती से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा है तो वो कभी नहीं झुकता, ना तो वह झुकता है और ना ही किसी को झुकाता है, बल्कि वह सर उठाकर हर तूफान का सामना करता है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म उमंग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार की डोरी जब दो दिलों के बीच में बंध जाती है, फिर न जमाने की कोई बंदिश न किसी का डर, फिर तो ये खूबसूरत प्रेम खामोशी में भी कितना कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म धरती कहे पुकार के से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई सी।

अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। तेरी यादों के चिरागों से पलकों की शामें जलती हैं। सोचती हूँ सो जाऊं किसी ख्वाब में जाकर, पर ख्वाबों में भी तेरी ही आहटें चलती हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और गीता रॉय की आवाज में फिल्म गूंज उठी शहनाई से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और फिल्म चोरी चोरी से अभी आपने गीत सुना। तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, यादों के सहारे ही सही हमेशा दिल में रहोगे। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पारस मणि से ये गीत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म अप्रैल फूल से अभी आपने गीत सुना। ना बंधन है ना फेरे हैं, ना बंधन है ना फेरे हैं, एक एहसास है जिसमें हम तेरे हैं। दोस्तों, आपका और हमारा साथ भी ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आप हमारे लिए बने हैं और हम आपके लिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म इंतकाम से ये गीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कोहिनूर से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, अब हमराही कार्यक्रम से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल

0: गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में बनने वाले अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैनिक कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन यदि उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा शुरू की या हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया तो अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश का नेतृत्व सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और ईरान अपने फैसले मजबूती से लेता रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिनों में असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में तेज बारिश होगी। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday, following repeated disruptions by opposition.

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को इस प्यारे से मौसम में मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक आशा होती है कि उसका परिणाम अच्छा हो, पर मन में अलग अलग विचार

भी आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, पर फिर भी हमारे मन में एक उम्मीद की किरण तो जल ही जाती है। और दोस्तों, ज़्यादा सोचना भी कभी कभी हमारी परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए जो होगा अच्छा होगा, यही सोचकर आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आशा से ये गीत।

दोस्तों, मौसम बहुत सुहाना है और बाहर हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। जिंदगी के कुछ पल इस प्यारे से मौसम के साथ बिताइए और साथ में सुनिए ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे, यानी फूल और कांटे दोनों ही होंगे, और अगर आपने दोनों के संग रहना सीख लिया तो जिंदगी अपने आप ही महक उठेगी।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म अनोखी रात से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मंजिल से।

उलझनों से भरी इस जिंदगी को, उलझनों से भरी इस जिंदगी को जरा बेफिक्री से जीना सीखो। आसमां तो वही है साहिब, बस तुम थोड़ा खुलकर उड़ना सीखो। आइए सुनते हैं नर्थ की फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म नया दौर से अभी आपने गीत सुना। छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले, छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले, जब भी मिले फुर्सत के पल प्यार का जहां बसाने चले। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ही जिया जाए कि कुछ फर्क ही ना पड़े। ये अभी आपने गीत सुना सत्ते पे सत्ता फिल्म से, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। और दोस्तों, इस दुनिया में हम आए हैं तो सभी तरह से दुनियादारी भी निभानी ही पड़ेगी। चाहे है तो थोड़ा बहुत मुश्किल ही, पर फिर भी करना तो पड़ेगा ही।

में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दुनियादारी से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपजे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के व्यवसायियों, निवेश एजेंसियों और उद्योग जगत से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम और स्थानीय मूल्य साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगे। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जाजोन्स्का दावाकोवा भी उनके साथ होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपजे संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। वे विश्व विरासत स्थल होरिड लेक भी जाएंगे। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर

0: इंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे तिरुपुर के ओजाशी में लिंगवेश्वर शिव मंदिर का भी दर्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 18 मई को कैबिनेट के फैसले के बाद गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। कोलकाता के विद्युत भवन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा अगर शुरू करी या फिर होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussions in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
1: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance, NDA party.

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह के इस सुहाने और शांतिमय माहौल में प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है शंकर महादेवन और साथियों ने।

दोस्तों, हंसी जिसका सुख केवल इंसान को ही मिला है, और जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर की सारी नसें, जो भी ब्लॉकेज है वो सब खुल जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज से ही हंसी को अपने दिनचर्या में शामिल करें।